इस मातृवंदना को सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये भजन। रचना ललिता शास्त्री के हैं।

अभी आप शेखर सेन की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं भाई सोहन और साथियों की आवाज़ों में ये शब्द।

अभी आप भाई सोहन व साथियों की आवाज़ों में ये शब्द सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें हमारे इन द्वीपों में भिंडी की खेती के संदर्भ में। भिंडी एक ऐसी सब्जी वाली फसल है जो हमारे इन द्वीपों में पूरे वर्ष उगाई जा सकती है। हमारे यहाँ की जलवायु व मिट्टी भिंडी की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। भिंडी के कच्चे फलों की सब्जी बहुत स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक होती है तथा इसके कच्चे फल विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा भिंडी में औषधीय गुणों की भी प्रधानता होती है। भिंडी की वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, परंतु इसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। यदि किस्मों का चुनाव ठीक नहीं है तो अधिक खाद देने व कृषि की उन्नत विधि का सही प्रयोग करने पर भी पैदावार बहुत कम मिलती है। हमारे द्वीपों की परिस्थिति में भिंडी की पूसा सावनी किस्म काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। हमारे द्वीपों में अच्छी उपज देने के लिए इस किस्म का चुनाव हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें विषाणु रोग के प्रकोप के प्रति प्रतिरोध की क्षमता होती है और इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। भिंडी के बीजों का जमाव 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर नहीं होता। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है और 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होने पर फूल गिरने लगते हैं। भिंडी की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। जल निकास की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है और मिट्टी में जीवांश की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। अच्छी पैदावार लेने के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 के बीच होता है, उपयुक्त है। खेत से खरपतवार साफ करके 2 से 3 खुदाई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। इसके बाद सुविधानुसार छोटी छोटी क्यारियां बना लें। लगभग 20 से 25 किलोग्राम बीज ग्रीष्म ऋतु की फसल के लिए तथा 10 से 15 किलोग्राम बीज वर्षा ऋतु की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। चूंकि ग्रीष्म ऋतु में पौधे से पौधे व कतार से कतार की दूरी हम कम रखते हैं, इसलिए बीज अधिक मात्रा में लगती है। किसान भाइयों, हमेशा अच्छी उपज के लिए शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। जहां तक बीजों की बुआई का प्रश्न है, बुआई के समय खेत में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु की बुआई से पहले बीजों को 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। ऐसा करने से बीजों का जमाव शीघ्र और अच्छा होता है। चूंकि वर्षा ऋतु की फसल में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा बढ़वार अच्छी होती है, इसलिए वर्षा ऋतु की फसल में कतार से कतार की बीज की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखा जा सकता है। एक स्थान पर 2 से 3 बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं तथा बीजों के जमाव के बाद जब पौधे 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तो एक स्थान पर केवल एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर बाकी पौधों को उखाड़कर फेंक दें। जहां तक खाद एवं उर्वरकों का सवाल है, भिंडी की अच्छी फसल लेने के लिए गोबर की अच्छी सड़ी खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरकों के लिए आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करें। अच्छी उपज के लिए फसल सुरक्षा पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। हमारे द्वीपों में भिंडी में कई प्रकार के कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है, जिस पर समय रहते नियंत्रण करने से आप भिंडी की अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

राग और सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं सुबह 8:10 पर और स्पोर्ट्स स्कैन रात 8:30 पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्य

0: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: As Prime Minister Modi's highly successful state visit to Australia draws to a close, today's engagements mark the final leg of his Melbourne itinerary before he departs for the next destination on his three-nation tour. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit reports that Mr. Modi is scheduled to meet the leader of the opposition, Angus Taylor, to discuss bilateral ties and political cooperation. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Auckland today on a 2-day visit to New Zealand on the third and last leg of his three-nation visit. Mr. Modi will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Both leaders will review the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. The visit to New Zealand will be the first visit by the Indian Prime Minister in 40 years. Mr. Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between India and New Zealand, the Prime Minister will address a large gathering of the Indian diaspora during the visit. Union Home Minister Amit Shah has said that a secure border, a prosperous border region and a vigilant society together can make the country secure. The Home Minister said this while addressing a conference of superintendents.

0: of police from border districts in New Zealand. I beg your pardon, in New Delhi. Mr. Shah said the government is creating a robust system to make the country completely infiltration-free. He noted that the Narendra Modi-led government has scientifically increased border infrastructure by 400%. Referring to the Vibrant Villages program, the Home Minister said that under the initiative, efforts are being made to prevent migration, create jobs and ensure 100% implementation of government welfare schemes. The BJP has announced the names of Sukhendu Sekhar Roy, Sushmita Dev and Prakash Chigbaraik as its candidates for the Rajya Sabha by-polls in West Bengal. The by-polls to these seats will be held on the 24th of this month. The three leaders recently quit the All India Trinamool Congress and joined the BJP. Former Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been laid to rest at the Imam Reza Shrine in Mashhad as thousands of supporters gathered to pay their final farewells. His eldest son, Sayyid Mustafa Khamenei, performed the ritual prayers. Ayatollah Ali Khamenei was killed in US-Israeli strikes on 28th of February this year, triggering a widespread conflict across the West Asia region. In the FIFA World Cup, France stormed into the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the first quarter-final in Boston, USA. The teams were goalless at half-time, but France took control in the second half, with Kylian Mbappe scoring this in the 60th minute and Ousmane Dembele doubling the lead in the 66th minute. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शनिवार 11 तारीख को सवेरे 7 डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कालीघाट आज रात 9 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान कल शनिवार 11 तारीख को सवेरे 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 श्री विजयपुरम से चलेगा। जलियान आज दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान आज दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्टेट आइलैंड आज शाम 5 श्री विजयपुरम से चलेगा। जलियान कल 11 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल शनिवार 11 तारीख को जाने वाले जलियानों के बारे में। एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल शनिवार 11 तारीख को रात 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन 12 तारीख को दोपहर बाद 2 डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शनिवार 11 तारीख को प्रातः 6 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान कल ही दोपहर 12 रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल 11 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शनिवार 11 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल 11 तारीख को सवेरे 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी अगले दिन 12 तारीख को सवेरे 7 रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 इसे फिर से सुनिए एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा

0: पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट एयरलाइन स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, चलिए आज याद करें किसी अपने को, टूटे हुए सपने को और कुछ सुकून के पलों को। श्रोताओं, यादें कभी धुंधली नहीं होती, बस वक्त की चादर में छुप जाती है। जब तन्हाई आकर सताती है तो किसी की याद दिल को तड़पा जाती है।

यादों का सिलसिला कुछ ऐसा है कि हर खामोशी में उसकी आवाज सुनाई देती है, दूर होकर भी हर धड़कन में बस वही नजर आती है, जिसके साथ बिताया हर लम्हा एक खूबसूरत याद है, दूर होकर भी बस वही ख्यालों में आती है, वो लड़की बहुत याद आती है।

श्रोताओं, किसी की याद की खुशबू कुछ यूं महकती है कि हर धड़कन में उसकी आहट रहती है और नजरों को उनका इंतजार कि वो आए तो गली में आज चांद नजर आए।

यादें दिल की भाषा है, जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। किसी की याद आंखों में नमी लाती है तो कुछ होठों पर मुस्कान। यादों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो दूरी को पल

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रही थी हेमलता। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरित मानस गान की 295 कड़ी।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूँ। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्री राम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्री राम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्री राम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

अभी आप रामचरितमानस गान की 295 कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और श्रीकांत पारगांवकर तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा की दूसरी कड़ी।

श्रोताओं नमस्कार। गांधी चर्चा में बातें शांति दूत गांधी जी की। अब मोहनदास 13 वर्ष के हो गए थे। एक दिन सुबह सुबह उनकी माँ ने उनसे कहा, सुनो मोहन, तुम्हारी शादी कस्तूरबाई के साथ पक्की करती है, वह पोरबंदर में ही रहती है। फिर वह हंसी और बोली, करसन दास की भी शादी हो रही है। मोहनदास मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनको पोरबंदर बड़ा प्रिय था और दुल्हन वहाँ की है, ये जानकर वे और भी आनंदित हुए। शादी की तारीख तय हो गई, विवाह की तैयारियां होने लगी। दोनों दुल्हों के कपड़े सीने के लिए दर्जी बैठाया गया, घर की सफाई की गई, उसे खूब सजाया गया। घर भर में मिठाई और पकवानों की सुगंध फैल गई। मोहनदास और उनके भाई दूल्हा बने, फिर एक सजी धजी बैलगाड़ी में बिठाए गए। 5 दिन बाद बारात पोरबंदर पहुंची। वधू के घर वालों ने बारात का जोरदार स्वागत किया और बारात के जनवासे में पहुंचने तक पूरे रास्ते में ढोल और बाजे बजते रहे। शाम को मोहनदास एक सजे धजे मंडप में ले जाए गए, वहीं दुल्हन भी आ गई। लाल रंग की साड़ी से उसका सिर ढका था। मोहनदास ने पत्नी की एक झलक देखी। विवाह संस्कार सुबह तक चलता रहा। मोहनदास को जोरों की नींद आ रही थी। सुबह तक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। उन दिनों बारात कई कई दिन रुकती थी। मोहनदास और उनके भाई की बारात भी पोरबंदर में 6 दिन ठहरी। शुभ मुहूर्त में दोनों भाई अपनी अपनी नववधुओं के साथ राजकोट आ गए। राजकोट में मित्रों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। समारोह और दावतें बहुत दिनों तक चलती रही। मोहनदास कस्तूरबाई पर मोहित थे। जब वे स्कूल जाते, सारे समय कस्तूरबाई के बारे में सोचते रहते। पढ़ाई में जरा भी मन ना लगता। वार्षिक परीक्षा हुई और वे कक्षा में फेल हो गए। उनका एक वर्ष बेकार चला गया। कस्तूरबाई को लिखना पढ़ना नहीं आता था। मोहनदास ने उन्हें पढ़ाने का निश्चय किया। पढ़ाते समय वे बड़े नाराज हो जाते। कस्तूरबाई ने उनसे पढ़ना छोड़ दिया। अक्सर वे दोनों खूब झगड़ते, फिर दोनों में समझौता भी हो जाता। मोहनदास बड़े दुबले पतले थे। एक दिन वे अपने भाई के मित्र शेख मेहताब से मिले और उससे खूब प्रभावित हुए। मेहताब स्वस्थ, लंबे कद का और बलशाली युवक था। एक दिन मोहनदास ने उससे पूछा, मेहताब तुम इतने तगड़े कैसे हो? मैं रोज मांस और अंडा खाता हूँ। मेहताब ने कहा, अगर तुम भी ताकतवर होना चाहते हो तो भैया तुम भी मांस और अंडे खाना शुरू कर दो। फिर मेहताब ने उसे अपने पुष्ट मांसपेशियां दिखाई। मोहनदास बड़े प्रभावित हुए और बोले, मैं भी मांस खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को पता चले। चिंता ना करो, मैं शाम को गोश्त लेकर

के पीछे आ जाऊंगा, तुम वहीं आ जाना, मेहताब ने कहा। शाम को मोहनदास चुपचाप घर से निकले और पेड़ के पीछे जा पहुंचे। मेहताब वहां पहले से ही गोश्त का पैकेट लिए खड़ा था। मोहनदास ने चारों ओर देखा, उनका दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ थर थरा रहे थे। उन्होंने जल्दी से मांस खाया और वापस घर आ गए। वे रात भर करवटे बदलते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पेट के अंदर बकरी मिमिया रही है, पर वे ताकतवर व हष्टपुष्ट होने के लिए इतने इच्छुक थे कि वे बराबर मांस और अंडा खाते रहे। लेकिन जब वे छिप छिप कर खाते, उनके मन में अपराध भावना भर जाती और उन्हें घर पर भोजन ना करने के लिए भी कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता। एक दिन मोहनदास के मन में विचार आया कि झूठ बोलना गलत है, और बस उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में कभी भी मांस नहीं खाएंगे। ये संकल्प उन्होंने फिर कभी नहीं तोड़ा। एक बार मोहनदास के चचेरे भाई ने उन्हें सिगरेट पीने को दी। मोहनदास ने एक कश खींचा और उन्हें जोर की खांसी आ गई। भाई ने उनका खूब मजाक उड़ाया। दूसरे दिन मोहनदास ने फिर सिगरेट पीने की कोशिश की। अब तो उन्हें सिगरेट पीने की लत लग गई। सिगरेट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। कई बार उन्होंने पैसों की चोरी भी की। फिर एक दिन उन्होंने माँ को कहते हुए सुना, चोरी करना पाप है। मोहनदास देर तक सोचते रहे, क्या करें। आखिर उन्होंने तय किया कि वे अपने पिताजी से सब कुछ सच सच बता देंगे। मोहनदास ने पिताजी को एक पत्र लिखा कि उन्होंने छिपकर कैसे मांस खाया था और कैसे सिगरेट पीनी शुरू की थी। पत्र में ये भी लिखा कि अब उन्होंने मांस बंद कर दिया है व सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है। जब पिताजी कमरे में अकेले थे, मोहनदास दबे पांव कमरे में आ गए और पिताजी के हाथ में वो कागज थमा दिया और चुपचाप नीचे निगाह किए वहीं खड़े होकर धरती की ओर देखते रहे। तभी उन्हें कागज फाड़े जाने की आवाज सुनाई दी। पिताजी ने कागज के टुकड़े फेंक दिए थे और उन्होंने बढ़कर मोहनदास के दोनों हाथ थाम लिए। मोहनदास का गला रुंध गया। उन्होंने निगाह ऊपर की। पिताजी की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। वे जान गए कि पिताजी ने उन्हें माफ कर दिया है। उनका मन हल्का हुआ और वे मन ही मन पिताजी को और भी चाहने लगे। पिताजी काफी दिनों से बीमार थे। मोहनदास जैसे ही स्कूल से आते, पिताजी के कमरे में जाकर उनके पैर दबाने लगते। जब तक पिताजी सो ना जाते, वे पैर दबाते रहते। एक रात मोहनदास गहरी नींद में सो रहे थे, किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। वे तुरंत उठे, दरवाजा खोला, देखा बड़े भाई खड़े हैं। क्या हुआ, मोहनदास ने आग मलते मलते पूछा। पिताजी चल बसे। मोहनदास भागते हुए पिताजी के कमरे में पहुंचे। पिताजी निश्चेष्ट पड़े थे। उनकी माँ, तीनों भाई और बहन उदास खड़े थे। उन्हें लगा कि उनकी सबसे अमूल्य वस्तु खो गई है। वे हुक मारकर रो पड़े।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 13 जुलाई तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकारा होंगी मीनू पुरुषोत्तम। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का लुत्फ उठाइए सवेरे 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का हिंदुस्तानी शैली में गायन आप सुन पाएंगे। संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुनिए सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1325वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। निकोबारी कार्यक्रम में 11:30 पर श्रोता सूचनाओं के अलावा कुछ लोकगीत भी सुन पाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे अर्शी बेगम, यूसुफ आजाद कवाल और महेंद्र कपूर। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत आप सुन पाएंगे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। और 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा एक ही श्रोता द्वारा पसंद किए हुए गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर आप सुन पाएंगे कुछ नजरुल गीत। संध्या 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर जय सुंदर से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी, बकरियों में वर्षाकालीन बीमारियां। समाचार तरंगिणी सुनिए 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 6:45 पर। शाम 6:55 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुनिए 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो फ्रेंड्स। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान। और व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं रात 10:00, जबकि आप रात 10:00 विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसितभारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिकविकासे विश्वसिति। विगत द्वादशवर्षेषु स्वस्य तृतीयम् आस्ट्रेलिया भ्रमणं हेट्रिक् इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत आस्ट्रेलिया सम्बद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर्नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्दप्रशान्तक्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वैब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रान्तिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमाप्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिकरीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीय

0: जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 5.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.4 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:01 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, हम आपको बता दें आज सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे उसी समय प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकारा होंगी मीनू पुरुषोत्तम। संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे सवेरे 10:00।

निकोबारी कार्यक्रम आज आप सुन पाएंगे दिन के 11:30 पर, जिसके तहत आज आप कुछ लोकगीत के अलावा कुछ सूचनाएं सुन पाएंगे। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

सन 2025 के अनुरूप सभी पेलाजिक ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस लगाना अनिवार्य किया है। पर्यटन विभाग 17 जुलाई से मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के द्वितीय संस्करण का आयोजन कर रहा है। कला एवं संस्कृति विभाग आज से 2 दिवसीय स्वरांजलि एक संगीतमय और सांस्कृतिक शाम का आयोजन करेगा। और अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने जून माह में 5,000 से अधिक ई चालान जारी किए।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अंडमान निकोबार समुद्री मत्स्यकीय नियम संशोधन

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्र में चलने वाले एक पेलाजिक ट्रॉल नेट में पहली बार टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का सफल इंस्टॉलेशन किया गया है। ये पहल पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के साथ समुद्री संसाधनों के उपयोग को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंडमान निकोबार समुद्री मत्स्यकीय नियम संशोधन 2025 के अनुरूप द्वीपों में संचालित होने वाले सभी पेलाजिक ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय समुद्री कछुओं का संरक्षण, जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देना और समृद्ध समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है। पर्यटन विभाग मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के द्वितीय संस्करण का आयोजन कर रहा है। ये उत्सव 17 से 19 जुलाई तक प्रदर्शनी मैदान में शाम 4 बजे से आयोजित होगा। इसके लिए विभाग ने होटल व्यवसायियों, रेस्तरा मालिकों, कैफे मालिकों, खाद्य उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, किसानों, स्टार्टअप्स, होम शेफ, स्थानीय उद्यमियों के साथ स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया है। इच्छुक प्रतिभागी स्टॉल आवंटन और भागीदारी के लिए अपना आवेदन निदेशालय के ऑपरेशनल सेक्शन में या ईमेल के माध्यम से 14 जुलाई दिन में 11 बजे तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग 17 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस संबंध में प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 10-12 प्रमुख मीडिया कर्मियों की पहचान कर उन्हें नामित करने का अनुरोध किया है। सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के साथ जाने के लिए प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया जा सकता है। नामित मीडिया कर्मियों की सूची उनके संगठन, पद, मोबाइल नंबर और ईमेल पते के साथ निर्धारित प्रारूप में 13 जुलाई तक आयोग को भेजी जा सकती है। इस सिलसिले में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने द्वीप समूह के सभी नामित ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया प्रतिनिधि का विवरण कल तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजने का आग्रह किया है। डिगलीपुर के पश्चिम सागर मार्ग पर चलने वाली एक एसटीएस बस कल दोपहर किशोरी नगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में स्कूली छात्रों सहित 58 यात्री सवार थे। बस के पलटने से 28 लोग घायल हो गए, जिनमें 17 स्कूल के छात्र और 11 नागरिक शामिल हैं। सूचना मिलते ही मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया। घायलों को चिकित्सा सहायता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशोरी नगर ले जाया गया। क्षेत्र के सहायक आयुक्त, SDPO और उप जिला अस्पताल की मेडिकल टीम ने तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों की निगरानी की। प्रारंभिक चिकित्सा जांच के बाद 14 छात्रों और सभी 11 घायल नागरिकों को आगे के परीक्षण और इलाज के लिए उप जिला अस्पताल डिगलीपुर रेफर कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार उप जिला अस्पताल में भर्ती सभी 25 मरीजों की स्थिति स्थिर है। एक 16 वर्षीय छात्र को आगे के इलाज के लिए जीबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। सहायक आयुक्त ने उप जिला अस्पताल डिगलीपुर का दौरा कर सभी आवश्यक उपचार दिए जाने का निर्देश दिया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने जांच लंबित रहने तक चालक को निलंबित कर दिया है। आगे की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है स्वरांजलि और यातायात पुलिस। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं।

प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कला एवं संस्कृति विभाग स्वरांजलि एक संगीतमय और सांस्कृतिक शाम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम आज और कल शाम 5:30 बजे गर्ल्स स्कूल के सभागार में आयोजित होगा। निदेशालय ने आम जनता को इस सांस्कृतिक उत्सव के लिए आमंत्रित किया है। अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए CCTV आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग और ई चालान सिस्टम के माध्यम से जून माह में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 5,000 से अधिक ई चालान जारी किए हैं, जिनमें बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, रेड लाइट जंप करना, स्टॉप लाइन पार करना, गलत जगह पार्किंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, वन वे और जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन शामिल है। यातायात पुलिस ने अभिभावकों से अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की विशेष अपील करते हुए दुपहिया वाहनों के लिए 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का ISI मार्क वाला सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। CCTV आधारित निगरानी 24 घंटे जारी है। पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, वैध वाहन दस्तावेज साथ रखने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, गति सीमा का पालन, नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति न देने और निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करने की सलाह दी है। दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति के तहत अनुबंध के आधार पर फार्मासिस्ट होम्योपैथी पद के लिए साक्षात्कार का परिणाम जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शा दिया गया है। इसके अलावा परिणाम की सूची प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों की श्रेणीवार अस्थायी वरीयता सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकाशित कर दी गई है। इस संबंध में दावे या आपत्तियां 15 जुलाई तक mggcexamwing@gmail.com पर मेल किए जा सकते हैं। अंतिम वरीयता सूची 16 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। परामर्श की तिथि की घोषणा बाद में होगी। दक्षिण फाउंडेशन एनेट ने मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से उत्तरी वंडूर में दक्षिण अंडमान के सागर मित्रों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र मत्स्य रक्षकों और सागर मित्रों सहित 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सहायक मत्स्य निदेशक निस्नास EA मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान मत्स्य प्रबंधन व निगरानी के महत्व, डिजिटल उपकरणों के उपयोग और विश्वसनीय डेटा सेट तैयार करने के लिए फील्ड प्रोटोकॉल पर जानकारी दी गई। जवाहर नवोदय विद्यालय छोलदारी में कक्षा 6 में शैक्षणिक सत्र 2027-28 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इच्छुक विद्यार्थी 31 जुलाई तक निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयन परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार समुद्री मत्स्यकीय नियम संशोधन 2025 के अनुरूप सभी पेलाजिक ट्रॉल नेट में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है। पर्यटन विभाग 17 जुलाई से मॉनसून फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के द्वितीय संस्करण का आयोजन कर रहा है। कला एवं संस्कृति विभाग आज से 2 दिवसीय स्वरांजलि एक संगीतमय और सांस्कृतिक शाम का आयोजन करेगा। और अंडमान निकोबार यातायात पुलिस ने जून माह में 5,000 से अधिक ई चालान जारी किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागनी।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब भी देश की बात आती है, हमारा दिलो दिमाग में जोश और देशभक्ति भर आती है। फिर तो देश और उसके सम्मान के आगे कुछ नहीं सोचता और फक्र से हमारा सर ऊपर उठाकर तिरंगे को सलाम करता है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है।

श्रोताओं, देशभक्ति वह भावना है जो हमें अपनी मातृभूमि से जोड़ती है। देशभक्ति का मतलब देश के प्रति प्रेम और उसकी भलाई के लिए जीना होता है। देश की खातिर मर मिट जाएं, ये प्रण आज हम अपनाएं। सरहद पर जो वीर खड़े हैं उनकी शान बढ़ाएं हम। रक्त की हर बूंद से अपने तिरंगे को सजाएं हम। एकता और अखंडता की मिसाल से अपने देश को आगे बढ़ाएं हम। Yeah.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

जिंदगी ठहरती नहीं कभी, चलती रहना ही इसकी पहचान है। गिरकर फिर उठ जाना ही तो हौसले की सच्ची उड़ान है। रास्ते चाहे मुश्किल हो, कोशिशों से ही समाधान है। जिन्हें खुद पर भरोसा है, उनके कदमों में आसमान है। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

तो श्रोताओं आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मुझसे दोस्ती करोगे इस फिल्म का ये गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सोनू निगम ने। बोल आनंद बख्शी के हैं व धुन बनाई है राहुल शर्मा ने।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म जख्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है MM करीम ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म जन्नत का ये गीत। इस गीत को गाया है के ने।

पेश है मयूर पुरी का लिखा एवं प्रीतम का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत, श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खां की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सिंग इज किंग।

और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए बचना ए हसीनो, इस फिल्म का ये गीत, और इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और लकी अली ने।

श्रोताओं, ये सफ़र ही तो ज़िंदगी है, मंजिल तो बस एक बहाना है। कभी धूप तो कभी छांव है, सबको हंसकर अपनाना है। हर मोड़ पर नई राह है, हर पल नया फसाना है। ये सफ़र ही तो ज़िंदगी है, यहाँ बस चलते ही जाना है। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।

0: de mar.
1: अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग

0: राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

0: से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
1: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज की कलाकारा हैं मीनू पुरुषोत्तम।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं अवतार इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। बोल आनंद बख्शी के हैं, वधुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए फिल्म जूली का ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद भी।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाजों में फिल्म अमृत का ये गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं, वधुन बनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं।
1: दी, हाँ? ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का बजाया सारंगी वादन। इनके साथ तबले पर है नफीस अहमद खान और तानपुरा पर विलास पेड़नेकर और शैलेंद्र दियोधर ने संगति की है। तो चलिए सुनते हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का बजाया राग मियन की मल्हार, जो द्रुत 3 ताल पर निबद्ध है।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का बजाया सारंगी वादन सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techy new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
0: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग।
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

तो हम आ गए एक बार फिर से संदेश टू सोल्जर्स में। ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये वक्त आगे बढ़ता रहता है। नई नई बातें, नई खोज,

0: तो हम आ गए एक बार फिर से संदेश टू सोल्जर्स में। ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये वक्त आगे बढ़ता रहता है। नई नई बातें, नई खोज, बस कुछ नया हो जाए, इंतजार करते हैं सब। और जब हम अपनी भारतीय सेना के बारे में बात करते हैं तो जिज्ञासा रहती है कि क्या नया हो रहा है। कुछ कीर्तिमान हासिल करते हैं लोग, कुछ करना चाहते हैं, कुछ जज्बा रखते हैं। कोई आता है किसी छोटे शहर से कुछ बड़ा करने के लिए, अपने देश के लिए। वो यूनिफॉर्म डालने के बाद संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक जाबाज सिपाही भी हैं और डॉक्टर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल डॉक्टर अमित अग्रवाल, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी आर्मी हॉस्पिटल, जिसे हम आरआर हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, और अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारतीय सेनाओं को। युद्ध की वो रणभूमि हो या फिर किसी के बिलखते हुए आंसू, एक डॉक्टर के हाथ ही उसे वो सांत्वना दे सकते हैं। कहते हैं फौज जितनी भी बलशाली हो, उसके पीछे भारत की जो मेडिकल कोर है उसका रोल बहुत प्रमुख होता है। हम बात करते हैं शौर्य की, उस प्रतिभा की, जो हमारे जवान, हमारे अफसर दिखाते हैं बॉर्डर पर और हर जगह जहां पे हमें चुनौती दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल कोर के लिए, क्योंकि एक आश्वासन बनके वो खड़ी रहती है हमारी सेना के साथ, पीछे नहीं, उनके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं कर्नल डॉक्टर अमित अग्रवाल का आप सबके साथ। आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मनीष जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया, एंड सारे श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप इस यूनिफॉर्म में, द ऑलिव ग्रीन विद द स्टार्स एंड ऑफ कोर्स दोस थ्री लायंस दैट आर रोरिंग एंड देयर टेलिंग अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस।
1: थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब भी हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो मेडिकल कोर है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, उनके पास, हम आधुनिक हथियारों की तो बात करते हैं लेकिन आधुनिक हमारे पास जितनी भी अवेलेबल हमारे पास मशीन्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं, वो हमें आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल कोर, उनके अस्पतालों में देखने को मिलती है। ये बात सच है?
1: बिल्कुल सच है। इनफैक्ट जो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के जो हॉस्पिटल्स हैं, ये टेक्निकली जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, लेटेस्ट गैजेट्स हैं सबके, मतलब वी आर एट पार विथ ऑल दिस हॉस्पिटल्स आउटसाइड। एंड ऐसा है कि हम लोग तकनीकी के मामले में या फिर नए ट्रीटमेंट्स के मामले में हम लोग बिल्कुल भी किसी से पीछे नहीं है। हमारा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर जो दिल्ली कैंट में है, ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का एपेक्स हॉस्पिटल है, सर्वोच्च हॉस्पिटल है। एंड यहाँ पे हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक किसी वर्ल्ड क्लास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए।
0: मतलब आर यू प्राउड कि जो भी फैसिलिटीज़ वर्ल्ड में बेस्ट हैं वो आपके पास आती हैं और आनी भी चाहिए? बट मतलब एक सांत्वना ठीक है, एक विश्वास ठीक है, बट does that add to that responsibility also that you have to give your best? Of course you are giving your best, but then it adds an extra responsibility.
1: जो responsibility की बात आप कह रहे हैं, definitely ऐसी बात तो है कि with each new technologies नए challenges भी आते हैं उनके साथ साथ, so we have to keep pace with these new technologies and इन challenges को हम face करते हैं and we come up with kind of a situation wherein we can tackle all these in a very nice way. So that जो हमारे patients आते हैं, हमारे जो फौजी जवान जो हमारे पास treatment के लिए आते हैं, they get the best of the treatment wherever it is possible.
0: ये पूछना सही होगा कि किस तरह के

0: मतलब पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की जब हम बात करते हैं लोग कहते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, उनको क्या बीमारी होती होगी?
1: सो ये एक गलत फहमी है जो सबके दिमाग में ज़रूर रहती है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हम फौजी हैं या हम जवान फौजी जवान हैं, फौजी ऑफिसर्स हैं, बट आफ्टर ऑल एक इंसान ही है, और हम इंसानों में जो प्रॉब्लम हो सकती है वो इनफैक्ट किसी भी फौजी को भी हो सकती है। एंड हम सिर्फ फौजी या फौजी जवानों को नहीं ट्रीट करते, हम उनके साथ साथ उनके फैमिलीज़ को भी ट्रीट करते हैं, जो एक सर्विसमैन है उनको भी ट्रीट करते हैं, उनके फैमिलीज़ को भी ट्रीट करते हैं। तो हमारा जो ये क्लाइंटेल है वो काफ़ी ब्रॉड बेस हो जाता है। तो हमारी की जो वर्कलोड है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली सोल्जर्स, बट उनकी फैमिली और एक सर्विसमैन को भी हम ट्रीट करते हैं।
0: कुछ ऐसी खास बात जो आप देखते हो कि बड़ी कॉमन एक बात होके आती है किसी भी डिजीज़ के बारे में, कहें जैसे हम दिल्ली पुलिस के पर्सनल से बात कर रहे थे तो एक कैंपेन चलता है कि उनको ना हाई ब्लड प्रेशर बहुत होता है बिकॉज उनके लॉन्ग ड्यूटी आवर्स होते हैं, तो वो एक कॉमन एक चीज़ है उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली कि इस तरह की प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स में। आप लोगों में भी कुछ ऐसा होता है? आई मीन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग।
1: सो बेसिकली दीज आर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स विच वी कॉल इट, एंड ईच ऑक्यूपेशन के अपने अपने हैजार्ड्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड। लाइक हम फौज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं दैट मे डिपेंड ऑन वेयर वो जो पर्सन कहाँ पे पोस्टेड है उस समय। लाइक अगर कोई काफ़ी ठंडी जगह या हाई ऑल्टीट्यूड के एरिया में पोस्टेड है तो वहाँ पे उनको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी एज कम्पेयर टू जवान जो रेगिस्तान में पोस्टेड है जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। सिमिलरली जो शिप्स पे पोस्टेड है नेवी के जवान वो काफ़ी लंबे समय जिनकी शिप्स सेल कर रही होती है तो वहाँ उनके अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको जनरलाइज करना मुश्किल होता है क्योंकि भारतवर्ष इतना लंबा चौड़ा इतने इतने काफ़ी वर्ग में फैला हुआ है। सो इट वुड डिपेंड ऑन द टेरेन द क्लाइमेट वेयर अ पर्सन इज पोस्टेड।
0: और आपने आरआर हॉस्पिटल में जब लोग आते हैं तो एक विश्वास के साथ आते हैं कि ये कंट्री का बेस्ट हॉस्पिटल है, मतलब द मैन इन यूनिफॉर्म देयर फैमिलीज उनके डिपेंडेंट स्पाउसेस वो तो आते ही, लेकिन हम सिविलियंस में भी ये धारणा है कि आरआर हॉस्पिटल में जाएंगे तो डायग्नोज अच्छे से किया जाएगा।
1: बिल्कुल सही।
0: ये फर्क आप देखते हैं सिविलियन हॉस्पिटल्स में और आप में, एंड अगर देखते हैं तो ऐसा क्यों है?
1: डेफिनेटली ऐसा देखते हैं हम जरूर, बिकॉज हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं फ्रेंड एंड फैमिलीज से या उनके दोस्तों से कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई या हमारे नियर या डियर वंस को ये प्रॉब्लम हो गई है, एंड आप प्लीज़ एक बार देख लें, आप अपना ओपिनियन दे दें, बिकॉज वो जानते हैं कि हमारे साथ या फौजी अस्पताल में जो भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके साथ कोई रुपये का लेन देन नहीं है, तो वो जो भी आपको ओपिनियन देंगे वो बिल्कुल सही ओपिनियन मिलेगा। तो ये जो आजकल मेडिकल फील्ड में जो इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा सिविल सेटअप में जो काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया है तो वो दैट इज़ नॉट देयर इन आर्म फोर्सेस। सो व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर्स इन द आर्म फोर्सेस तो उनकी जो ओपिनियन होती है बिल्कुल सही होती है, विदाउट एनी बायसेस होती हैं, तो इसलिए पीपल प्रिफर कि एक सेकेंड ओपिनियन अगर लिया जाए तो किसी ऐसे डॉक्टर से लिया जाए जो बिल्कुल सही ओपिनियन दे उनको। तो इसलिए काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास एंड हम उनको अगर संभव हुआ तो जरूर हेल्प
0: आउट। विश्वास के साथ भी आते होंगे कि मैंने सुना था जब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो आपने एक जिक्र किया था कि कई बार जवान अफसर उनकी फैमिली सोचते हैं कि आरआर हॉस्पिटल ले जाओगे तो मेरी जान बन जाएगी।
1: बिल्कुल सही, ऐसा इनफैक्ट हमने कॉरिडोर्स में एंड बहुत सारे जवान ऐसा जरूर बोलते हैं, जरूर सोचते हैं कि आरआर हॉस्पिटल जो हमारा हमारे फौज का सर्वोच्च हॉस्पिटल है उसकी जो फंक्शनिंग है उनके जो डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट हैं इन द कंट्री, एंड अगर हम किसी तरह एक बार आरआर हॉस्पिटल पहुँच गए तो हमारा जो हमारी जो बीमारी है उसका इलाज बहुत अच्छे से होगा, एंड अगर हमारी जान पे बनाई है तो हम जरूर बच जाएंगे।

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और मेरे साथ बैठे हैं आज एक खास मेहमान जो कार्यरत हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस में, कर्नल डॉक्टर अमित अग्रवाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी आर्मी हॉस्पिटल। और

0: मैं आपसे जो सिविलियन सवाल हैं वो कभी कभी थोड़े से अजीब से बचकाने भी लग सकते हैं, लेकिन इस समय जब हम संदेश टू सोल्जर्स में आपसे बात कर रहे हैं तो याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ गेस्ट आए जिनसे हम उनके शौर्य के वॉर टाइम्स कॉम्बैट टाइम्स के बारे में बात करते हैं। आपकी कभी कहीं पोस्टिंग हुई हो विच वॉज अ यू नो जहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बीच आप थे एंड यू हैड टू डिलीवर?
1: जरूर ऐसा हुआ है। इनफैक्ट डॉक्टर्स के लाइफ में ऐसा अक्सर होता रहता है कि आपको किसी कॉम्प्लेक्स केस के साथ डील करना पड़ता है, एंड सिर्फ केस के साथ नहीं, उनके साथ जुड़े हुए जो फैमिली मेम्बर्स, उनके इमोशंस के साथ डील करना पड़ता है।
0: जी
1: तो मुझे आज तक याद है, मेरी पहली पोस्टिंग हुआ करती थी, मैं आसाम में पोस्टेड था उस समय, यंग डॉक्टर था, एक साल की सर्विस थी, नई नई शादी हुई थी, दिवाली का दिन था, इनफैक्ट दिवाली आने वाली है, दिवाली का ही दिन था, शाम का वक्त हो रहा था, हम लोग घर में पूजा की तैयारी कर रहे थे, एंड मेरी वाइफ जो मेरे साथ ही आर्मी में ही पोस्ट उस समय साथ में ही पोस्टेड थे हम लोग
0: जी
1: आसाम में, तो उनके हॉस्पिटल से कॉल आया कि मैडम दो जवान फौजी जवान उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल आए गए।
0: ओके
1: तो दिवाली का शाम का वक्त था, ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ ताकि जल्दी हम देख के एंड वापस आ जाएंगे एंड फिर पूजा करेंगे। तो इनफैक्ट जब हॉस्पिटल पहुंचा तो काफ़ी दो जवान थे जो दिवाली की मिठाई लेके अपने दोस्तों को बांटने जा रहे थे और उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक एक को सर में काफ़ी भयंकर चोट लगी थी, वो बेहोश पड़ा था, और दूसरे के पैर की दोनों हड्डियाँ टूट गई थी। तो
0: ओके
1: दिवाली वाले दिन हमारे उस हॉस्पिटल में उनके परिवारजनों के सामने पूरा मातम का माहौल था। तो इनफैक्ट हॉस्पिटल छोटा था, हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, हम लोग
0: ओके
1: एक जनरल MBBS डॉक्टर्स थे, सर्जन नहीं थे,
0: ओके
1: सर्जरी करने की फैसिलिटी नहीं थी, हमें उसको उनको इवैक्यूएट करना पड़ा।
0: ओके
1: तो हमें जितनी जल्दी हो सके हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, पेशेंट को स्टेबलाइज किया, ब्लड नहीं था हमारे पास
0: ओके
1: तो हमने IV फ्लूइड्स वगैरह लगा के स्टेबलाइज किया पेशेंट को, एंड 1 घंटे दूर हमारे एक बड़ा हॉस्पिटल था वहाँ ट्रांसफ़र किया। उस हॉस्पिटल में पहुँच के डॉक्टर ने उन पर ऊपर रात भर सर्जरी की, एंड नेक्स्ट डे हमें ये खबर आई कि दोनों अब खतरे से बाहर है।
0: ओह वंडरफुल।
1: सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विच वी हैड कि दिवाली वाला दिन था एंड वी वर एबल टू सेव टू लाइव्स दैट नाइट। सो काफ़ी पुरानी बात हो गई, 25 साल पुरानी बात है, बट आज तक ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में मैं दोबारा कभी नहीं आया।
0: पर ये जो गाथा आपने अभी ये जो जो वाक्य आपने सुनाया, आई थिंक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे और इंस्टेंसेस हुए होंगे जहाँ पे मतलब जिंदगी और मौत के बीच में एक डॉक्टर ही खड़ा है, वही डिसाइड कर सकता है द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट। आपके भी कोई आइडल रहे आर्म्ड फोर्सेस में जब आपने ज्वाइन किया? वही यू डिड यू लुक अप टू समबडी? और इतना आसान तो नहीं होता इतनी टफ सिचुएशन में चीज़ों को बहुत कूल एंड कामली हैंडल करना।
1: सो बताना चाहूँगा कि मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे में स्थित है
0: जी
1: उसका स्टूडेंट, एंड इस कॉलेज में इट इज़ मेंट फॉर आर्मी पीपल, बेसिकली रन बाय आर्मी, एंड जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे वो काफ़ी सारे टीचर्स थे जो मेरे प्रेरणा के स्रोत बने, एंड MBBS भी मैंने वहीं से की, MS सर्जरी भी मैंने वहीं से की, एंड MS सर्जरी में जो हमारे प्रोफेसर एंड हेड हुआ करते थे
0: जी
1: वो मेरे जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, एंड आज तक उन्होंने जो हमें सिखाया, उन्होंने जो हमें समझाया
0: जी
1: वो आज तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स जिनके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया।
0: अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स को भी फौजी स्टाइल में ही सिखाया जाता है या डॉक्टर्स को डॉक्टर्स के स्टाइल में ही सिखाया जाता है?
1: वेरी वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन।
0: ओके
1: इनफैक्ट डॉक्टरी और फौज का ये मिश्रण जो है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि जब ट्रीटमेंट हम कर रहे होते तो बिल्कुल डॉक्टर के जैसे करते हैं, बट जहाँ तक फौज का सवाल है, डॉक्टरी और फौज का सवाल है, तो डिसिप्लिन्ड लाइफ तो डेफिनेटली है, बट ट्रीटमेंट के मामले में फौज इंटरफेयर नहीं करती। सो ट्रीटमेंट इज़ एज पर द मेरिट ऑफ द केस एंड डिसिप्लिन इट्स इन इट्स ओन प्लेस।
0: कहने को मन कर रहा है क्योंकि आपने यूनिफॉर्म पहनी है एंड यूर अ कर्नल यूर अ डॉक्टर विद द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर। आपको तो देश के प्रति जो जो आपकी भावना होगी मैं ये नहीं कहूँगा कम है या ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली आप अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं यू वांट कि हमारी जो फौजें हैं

0: वो डिलीवर जो है ना वो बहुत अच्छा करें। तो आपको जब खबरें मिलती हैं, जब शौर्य गाथाएं आप सुनते हैं, आपके अंदर भी कुछ वैसा एक फीलिंग आती है, यू नो, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि कुछ भी हो हमारी फौज बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पीछे तो हम खड़े हैं, कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे। तो आपको भी वो दैट दैट एक्स्ट्रा फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है?
1: मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने आप को इसका एक हिस्सा मानता हूँ, अपने आप को इससे पढ़े नहीं मानता हूँ। तो ऐसा है कि जो हमारे वीर जवान फ्रंट्स पे हैं, बॉर्डर्स पे हैं, एंड जो लड़ाई कर रहे हैं या डिफ़िकल्ट टेरेन या क्लाइमेट से जूझ रहे हैं, एंड उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारी पूरी की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी उस वो भी उनके साथ साथ वहीं पे उनके साथ खड़ी है। सो हमारे फॉरवर्ड बेसिस हैं, फॉरवर्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ साथ एक कंसेप्ट है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर्स का, जो उनके साथ साथ बिल्कुल फ्रंट लाइन तक जाते हैं। सो हम उनके अभिन्न अंग हैं, उनका एक हिस्सा है, तो हम उनके साथ साथ चल रहे हैं पूरे इस लड़ाई में, पूरे इस करियर में उनके। तो पीछे मैं आज पीछे सर्वोच्च हॉस्पिटल में बैठा हूँ बिकॉज मैंने एक सुपर स्पेशलिटी कर ली, तो मैं इसलिए आज किसी एक बड़े हॉस्पिटल में। बट जब मैं यंग मेडिकल ऑफिसर था तो मैं भी ऐसी जगह पे पोस्टेड रहा हूँ जहाँ पे मैं इनके साथ कदम पे कदम मिला के चल रहा था।
0: एंड यू आर वॉकिंग विद अ ट्राई कलर
1: एब्सोल्युटली
0: विद आवर इंडियन फोर्सेस।
1: एब्सोल्युटली।
0: यहाँ पे एक छोटा सा गीत सुनते हैं। गीत ड्यूरेशन छोटी है, लिरिक्स बहुत बड़े हैं, म्यूजिक भी।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और ये बताना चाहूंगा कि मेरे साथ इस समय डॉक्टर अमित अग्रवाल हैं, कर्नल हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी आर्मी हॉस्पिटल। तो आपसे मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे सिविलियंस ये सोचते हैं कि जब भी कोई डिफेंस बजट सैंक्शन होता है तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द वेपनरी एंड द एडवांस मशीन्स दैट वी वॉन्ट टू यूज वाइल द कॉम्बैट इज हैपनिंग। तो उस बजट में आपका मेडिकल कोर को भी कुछ सैंक्शंस होती हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है।
1: बिल्कुल। सो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के जो बजट हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट ओनली,
0: जी
1: एंड हमारी जितनी दवाइयाँ जितनी इक्विपमेंट्स ये सब आ रही हैं दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डिफेंस बजट। सो इनफैक्ट ए सेपरेट हेड है आउट ऑफ द डिफेंस बजट विच कम्स फॉर द मेडिकल्स एंड मेडिकल सप्लाईज ऑफ द आर्म फोर्सेज।
0: ओके। और इसमें जब हम बात करते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, आप लोगों की भी रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होते रहते हैं, जो भी नई मेडिकल इक्विपमेंट्स आए हैं या एडवांसमेंट्स हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, उससे आपको अवगत कराते रहते हैं। तो ये एट पार चलता है जो सिविलियन हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स हैं, आप लोग एट पार उन सेमिनार्स में होते हैं, आप लोगों की अलग होती हैं?
1: इनफैक्ट

0: टू टेल यू वेरी फ्रैंकली,
1: जी
0: हमारे जो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में ऐसा है कि एक तो हम लोग खुद ये सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं, नॉट ओनली टू अपडेट आर ओन यंगस्टर्स, आर ओन डॉक्टर्स,
1: जी,
0: बट इस सेमिनार्स में, इन कॉन्फ्रेंसेज में सिविल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग भी एज अ डॉक्टर्स इंडिविजुअल तौर पे बाहर जो सिविल में कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, वी पार्टिसिपेट इन देम, वी प्रेजेंट आवर पेपर्स, एंड वी हम लोग उनके जो कॉन्फ्रेंसेज में जो बातचीत होती है वो हम सुनते हैं एंड अपने आप को अपडेट करते हैं. सो बेसिकली हम वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंटरनेशनल मेडिकल फ्रेटर्निटी, जहाँ पे हम अपने आप को काफ़ी अपडेट करते रहते हैं. एंड बिकॉज अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं कर सकेंगे तो हमें नए ट्रीटमेंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा और हम अपने पेशेंट को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएंगे.
1: आपने ये जो कॉन्फ्रेंसेस की बात की, सेमिनार्स की बात की, हम सुनते हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी होती हैं, हम कभी वो यहाँ आती हैं कभी हम वहाँ जाते हैं, आप लोगों की भी कुछ ऐसी जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं या आई मीन इट्स जस्ट द कॉन्फ्रेंसेस एंड लिमिटेड टू द सेमिनार्स?
0: सो ये जो आप एक्सरसाइजेस की बात करें, दीज आर जनरली मिलिट्री एक्सरसाइजेस meant for the operational forces, जिसको हम बोलते हैं. पर जहाँ तक हमारा medical field is concerned, तो medical field में अपने आप को update करने के लिए conferences हैं या hands-on workshops होते हैं. तो from time to time on individual level जो हमारे doctors हैं वो बाहर जाते हैं, या in fact जो हमारी armed forces medical services हैं उसमें there's a concept of study leave, जहाँ पे doctors को कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए ऑफिशियल परमिशन दिया जाता है कि वो बाहर जाएं, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस के हॉस्पिटल से बाहर निकल के सिविल हॉस्पिटल्स में जाएं और अपने जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाएं, कुछ नई चीज़ें सीखें और वापस फ़ौज में आके फ़ौज में नई तकनीक, नए स्किल्स, नए ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट करें.
1: आई थिंक ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ऐसा नहीं है कि किसी को बीमारी हो जाए या किसी को कोई दिक्कत आए तभी पेशेंट्स आप तक पहुंचते हैं. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल कोर इज पार्ट ऑफ दी यू नो द वेरियस रिलीफ मिशंस दैट हैपन, एक नेचुरल कैलामिटी की बात कर लें या कोविड फॉर दैट मैटर जब आया था, तो आप लोग ने अपना जो आपका जो पैरामीटर है आर्म्ड फोर्सेस का उससे बाहर निकल के भी आपने वो सेवाएँ प्रदान की?
0: इनफैक्ट कोविड वॉज, जब कोविड आया था तब इट वॉज अ अनप्रिसिडेंटेड प्रॉब्लम विद द कंट्री एट फेस दैट टाइम. सो आर्म फोर्सेज जो हमारी जो सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज, तो इसने अब भी अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से गियर अप किया. इनफैक्ट हमने आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने पहले क्वारंटाइन, बहुत सारी क्वारंटाइन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश किए, कुछ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स जो सिविल अथॉरिटीज द्वारा बनाए गए थे, वहाँ पे आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने अपना योगदान किया, डॉक्टर्स भेजे, नर्सिंग स्टाफ भेजे जो वहाँ पे जाके लोगों को उन्होंने ट्रीट किया. हमारे खुद आर्म फोर्सेज के कुछ हॉस्पिटल्स थे जिनको पूरी तरीके से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया. इनफैक्ट दिल्ली में बेस हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट में जो है, वो पूरी तरीके से एक कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, जहाँ पे इनिशियली 250 ऑक्सीजन बेड्स होते थे, बट धीरे धीरे उसको बढ़ा के ऑलमोस्ट 900 ऑक्सीजन बेड तक कर दिया गया था. आईसीयू फैसिलिटी वहाँ पे इंक्रीज कर दी गई थी, एंड जो भी कोविड के पेशेंट्स आ रहे थे उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया वहाँ पे. तो इनफैक्ट आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने काफ़ी अच्छा काम किया था कोविड के समय, एंड वी वर एबल टू सेव अ लॉट मेनी लाइव्स दैट टाइम.
1: And that was a difficult period, ना? आपको तब लगा था कि यह बड़ा challenging time है, आपको भी लगा as a doctor कि पता नहीं आगे क्या होगा?
0: Definitely, because उस समय ऐसी हालत थी कि हम as a doctor, we were the only people going out of the house and treating patients जिनको COVID था. In fact, हम आगे जाके COVID वाले patients को treat करना चाह रहे थे, and हमें पता नहीं था कि ये COVID हमें कब होगा, या इस कोविड अगर हमें हो जाएगा तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी. इसको सोचे बिना हम पेशेंट्स को ट्रीट किए जा रहे थे. तो हमारे कुछ मेरे साथी हैं जो कोविड से ग्रस्त हुए, कुछ काफ़ी सीरियस हुए, मेरे एक साथी की जान भी गई कोविड के बाद. सो आई मीन हमने देखा है कि नुकसान सबका हुआ, बट डॉक्टर ही एक ऐसी कम्युनिटी थी उस समय, डॉक्टर्स एंड पैरा

0: मेडिकल्स ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था कोविड के समय।
1: और उसी दौरान अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा एक एक टसल हुई थी चाइनीज बॉर्डर पे व्हेन द कोविड वाज ऑन. आपके लिए तो एक एडेड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट दी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कोर के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी वो जो झड़प हुई थी गलवान वैली में, तो उसको आप लोगों ने बड़े चैलेंजिंग वे में एक्सेप्ट किया.
0: डेफिनेटली बिकॉज जो गलवान अटैक हुआ था, जो भी हुआ था, एंड हमने जैसे टैकल किया था, तो ऐसा था कि जो आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज थी वो तैयार थी किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो, एस्केलेट हो अगर मामला, तो हम अपने आप को तैयार करें। तो वी वर टोटली रेडी टू रिसीव एनी काइंड ऑफ अ कैजुअलिटी दैट टाइम एंड एनी इवेंचुअलिटी दैट टाइम।
1: मन कर रहा है कि आपसे एक बात पूछूं कि जब भी कुछ ऐसा कॉम्बैट सिनारियो होता है, आप लोगों को बता दिया जाता है कि थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिए कि एक कोई बहुत ही टफ मिशन होने वाला है और आपके लिए हमेशा 24 आवर्स इज अ फुल अलर्ट.
0: सो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। वी आर हम लोग आर्म फोर्सेस का हिस्सा हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ मिशंस होते हैं सीक्रेट रखने पड़ते हैं फॉर नोन रीजंस। सो कई बार ऐसा होता है कि इट इज़ नीड टू नो बेसिस। सो अगर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो, तो वी गेट रेडी। सो हमारा रोल जो पेशेंट ट्रीटमेंट का है, तो वी आर टोल्ड टू गेट रेडी एंड वी बिकम रेडी फॉर दोज इवेंचुअलिटीज।
1: ये तो हमने बात की कि आपका जो शौर्य एज अ डॉक्टर एज अ कर्नल आप दिखा रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है. आपको समय मिलता है अपने लिए,
0: निकालना पड़ता है।
1: निकालना पड़ता है. और उस समय के बीच में अगर मैं एक आर्म्ड फोर्सेस के मेडिकल कोर के डॉक्टर से पूछूं कि आप अपने आप को अनवाइंड कैसे करते हैं इस तमाम, मतलब एक वेरी टफ सिनारियो, इट्स नॉट इजी फॉर अ डॉक्टर, 24/7 आप लोग काम पर होते हैं, बट आप कैसे अपने आप को अनवाइंड करते हैं?
0: सो दैट्स अ वेरी वेरी इंडिविजुअल क्वेश्चन आई वुड से। सबका अपना अपना तौर तरीका है, ईच वुड हैव इट्स ओन वे टू अनवाइंड। सो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बागवानी का शौकीन हूँ। सो घर में आई हैव अ बिग गार्डन, लॉट मैनी पॉटेड प्लांट्स, तो जब समय मिलता है मैं बागवानी करता हूँ।
1: ये लॉट मैनी कितना हुआ, लॉट मैनी?
0: वो मत पूछिए।
1: अच्छा, वो नहीं.
0: सो जब भी समय मिलता है तो आई एम देयर।
1: ओके.
0: उसके अलावा आई एम अ कॉइन कलेक्टर, सो आई हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। सो मेरे कुछ संडेज तो कॉइन्स को एल्बम्स में ही निकल जाते हैं। सो आई हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ आई वुड से जो ब्रिटिश इंडिया के समय हमारे पास जितने टाइप्स ऑफ करेंसीज इशू हुए थे, सो आई हैव द एंटायर कलेक्शन विद मी। इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक इंडिया के जितने आज तक करेंसी इशू हुए, सो
1: अच्छा.
0: ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी आई हैव अ कॉइन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। सिमिलरली जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे ब्रिटिश के समय एंड उसके पहले, सो लॉट मेनी किंगडम्स इज देयर इन माई कलेक्शन। सो अ ह्यूज कलेक्शन आई बोस्ट ऑफ।
1: और अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं आप?
0: अब समय नहीं मिल रहा, जब से इस दिल्ली में पोस्टिंग आया तब समय नहीं मिल रहा है इस हॉबी को परस्यू करने के लिए, बट आई एम श्योर कि वंस आई एम आउट ऑफ दिस प्लेस आई विल गो बैक टू माई हॉबी।
1: राइट. दोस्तों, आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ है कर्नल डॉक्टर अमित अग्रवाल की, जो हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में, जो बेस हॉस्पिटल है, कार्यरत हैं और हमारे शो में आए हैं. बहुत बड़ी बात है. और ये बताना चाहूँगा कि एक तरीके से जो देश की भावना है ना, वो बता रहे हैं कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर की जो ताकत है वो किसी से कम नहीं है, और ये भी उतने ही पेट्रियोटिक हैं जैसे आप और हम. और मैं ये कहूँगा, आर्म्ड फोर्सेस की जो हमारी मेडिकल कोर है, ज़रूरत पड़ती है तो अपना दायरा लांघ कर जाते हैं आपकी और हमारी मदद करने के लिए. देश प्रेम में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं.

0: रहे हैं तो।
1: जी धन्यवाद मुनीश,
0: बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि कैसा लगता है कि आपके परिवार से एक सदस्य एक उस समय एक छोटा टाउन हुआ करता था और वहां से निकलकर उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल कोर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका निभा रहे हैं।
1: भाई ये तो अच्छा लगता है कि जब एक आर्मी यूनिफॉर्म पहन के हम लोग, वो हमारे साथ होता है जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और साथ में वो खड़ा रहता है यूनिफॉर्म पहन के, तो उस समय तो लगता है छाती चौड़ी हो गई।
0: मुझे ये बताइए कि जब इस तरह की भावना आपके अंदर आती है तो वो जब शुरुआत हुई होगी तब भी ऐसी भावना थी, कुछ शंका तो नहीं कि आप आर्म्ड फोर्सेस की तरफ क्यों जा रहे हो, ऐसी प्रैक्टिस कर लो?
1: नहीं नहीं ऐसी मुझे तो कोई शंका नहीं थी, उस समय भी बहुत ही अच्छा लगा था जब उसका सिलेक्शन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज FMC पुणे में हुआ था, तो हम लोग तो बहुत खुश हुए थे कि एक तो डॉक्टर बन रहा है और दूसरा देश को सर्व कर रहा है।
0: ओके, पर आपकी फैमिली में ये ट्रेडिशन था कि आपकी फैमिली से कोई आर्म फोर्सेस में कभी भी या फौज में कभी गए हो?
1: नहीं नहीं उस समय तो कोई भी नहीं थे।
0: और मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कुछ बोलने से चूकूंगा नहीं, मतलब सरनेम अग्रवाल है और अग्रवाल जा रहे हैं फौज को ज्वाइन करने, तो मतलब उस समय का एरा, आज से अगर मैं 30 साल 35 साल पहले की बात करूं, भारत बहुत अलग था उस समय।
1: बिल्कुल,
0: क्या लगता है आपको कि क्या खास बात है डॉक्टर अमित अग्रवाल में, उनकी एक खास बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: उसमें खास बात है एक तो डेडिकेशन, गलत ना करना और गलत बर्दाश्त भी ना करना। गलत होते हुए देखता है तो वो किसी से भी लड़ सकता है।
0: फौज में है तो ये क्वालिटीज तो जरूर
1: नहीं, ये फौज की क्वालिटी नहीं है, ये उसके बचपन की क्वालिटी है।
0: अगर मैं आपसे यहां, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान के बाहर भी आपको सुना जा रहा है, अगर आकाशवाणी के माध्यम से आज आपकी जो आवाज हमें सुने जा रही है, आप अपने भाई को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, वो आपकी आवाज सुन पा रहे हैं?
1: भाई जिस तरह से वो काम कर रहा है वैसे ही आगे करते रहे और देश के लिए जिस तरह से डेडिकेशन है वो हमेशा रहे।
0: आप लव यू चाहेंगे? ही सेइंग लव यू,
2: थैंक यू, आई लव यू ब्रदर,
0: बट ही सेड सम गुड थिंग्स अबाउट यू, कि ना मैं गलत बर्दाश्त करता हूँ ना करूंगा फॉर एनीबडी। Is that a personality trait? Is that a strong point in you?
2: I take it as a strong point, but may not be a strong point for my colleagues and my people around me. So, ये ठीक है, individual choices हैं।
0: तो आपके फौज में भी जब कोई decision लेता हूँ तो कई बार difference of opinion तो होता ही होगा।
2: होता ही है, that if with this quality it's bound to happen, yes.
0: But eventually आप सबका भला ही तो चाह रहे हैं।
2: Absolutely, absolutely. So ultimately everybody sees that कि आप पर्सनल मोटिव के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या लार्जर गेन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो देन थिंग्स गो इनटू राइट पर्सपेक्टिव।
0: अपने भाई की कोई एक स्ट्रॉन्ग बात बताना चाहेंगे? हाउ डिड ही बैक यू अप व्हेन ही गॉट टू नो कि आप जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में, कुछ याद है?
2: ही इज अ वेरी सपोर्टिव पर्सन एंड मैंने जो भी कुछ किया, कभी भी कुछ किया, तो ही वॉज ऑलवेज देयर बिहाइंड मी कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ
0: हूँ। एंड आई एम श्योर यही बात थी, आप एयर पे ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं।
2: नहीं नहीं बिल्कुल सही, ऐसी बात।
0: तो आप लोग पले बड़े हैं, कितना डिफरेंस है आपकी एज में और ब्रदर?
2: सो ये मुझसे 2 साल बड़े हैं एंड अभी ये बिजनेस कर रहे हैं जहाँ में रह रहे हैं एंड ही इज बीन ऑलवेज सपोर्टिव एंड वेरी वेरी लविंग एंड अ लवली ब्रदर आई हैव।
0: सुमित जी, बचपन में डॉक्टर अमित अग्रवाल कितने, इज अ नॉटी किड या बहुत ही पढ़ाकू बच्चे थे?
1: हम लोग बहुत लड़ाई करते थे।
0: अच्छा, चलिए बता दिया, कुछ तो हमने खोद के निकाला, ब्रेकिंग न्यूज हो गई। तो वो लड़ाई मतलब खिलौनों के लिए होती होगी या कुछ?
2: इनफैक्ट मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे,
0: प्लीज प्लीज।
2: हमारी बचपन की लड़ाइयाँ इतनी होती थी कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो हम लोगों से तंग आ गए थे। तो इनफैक्ट ये 1985 की बात है जब मैं क्लास 5 में होता था।
0: ओके,
2: तो पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम घर में रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ अब, नाउ यू गो टू अ हॉस्टल। सो आई वाज पुट इन अ हॉस्टल व्हेन आई वाज इन क्लास 5, कि मैं इतना ज्यादा नॉटी था और अपने भाई के साथ इतना लड़ाई झगड़ा करता।
0: बट ही इज अ गुड ब्रदर ना, इन्होंने ये वाली बात बिल्कुल नहीं बताई कि आपको हॉस्टल घर से निकाल दिया।

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली, कर्नल डॉक्टर अमित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आपने जब डॉक्टरी की पढ़ाई की उसके बाद आप आर्म्ड फोर्सेस में क्यों आए, एक सज्जन हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो थोड़ा बहुत आपके बारे में ज़रूर जानते हैं। आपके भाई मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं और सुमित अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा

0: बात कर रहा हूँ, ये आपने तो कभी मतलब आपके मुंह से निकल रहा है, बट वो देखो ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू।
1: यस
0: क्यों सर, बात सही है ये?
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: राइट देन। तो समय समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और हमसे बात कर की आपने संदेश सोल्जर्स में, एंड थैंक यू सो मच फॉर बैकिंग अस अप एंड ऑफ कोर्स लुकिंग आफ्टर आर डॉक्टर यू नो हु इज लुकिंग आफ्टर आर यू नो आर्म्ड फोर्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप और हमारे साथ इस समय खास मेहमान हैं जिनके बारे में तो आप सुन ही रहे हैं, कर्नल डॉक्टर अमित अग्रवाल। अब हम चलते हैं आपके थोड़े बचपन की तरफ। आपने बोला आप हॉस्टल चले गए, तो वहाँ से मेडिकल फ्रेटर्निटी में आने का वो रास्ता कब तय हुआ एंड हाउ डिड यू यू नो टुक दिस पाथ टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
1: ओके, सो डॉक्टर बनने का जज्बा जो था वो काफ़ी दिनों से था, बचपन से ही था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। तो 11th 12th में इनफैक्ट जब हम लोग थे उस समय दो या तीन चीज़ें ही थी जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, आइदर मेडिकल लाइन और इंजीनियरिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप यहाँ पे साइंस नहीं ले रहे हैं तो चार्टर्ड वाज द थर्ड लाइन
0: वो एरा था हिंदुस्तान का।
1: इनफैक्ट उसके अलावा और अगर आपने कुछ ये तीनों में से कुछ नहीं किया तो आप नालायक होते थे।
0: ओके,
1: सो तो मैंने डॉक्टरी की लाइन चुनी थी एंड इनफैक्ट
0: एंड यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। अगर उस जगह का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, हम नहीं लेना चाहेंगे, बट यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और फिर
1: यस यस। सो इनफैक्ट क्या हुआ था कि जब क्लास 12 के बाद पहली बार मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दी थी
0: जी,
1: सो आई कुड नॉट गेट थ्रू, कुड नॉट पास दोज एग्जाम्स एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ सीट इन टू अ मेडिकल कॉलेज। सो इनफैक्ट आई हैड टू टेक अ ड्रॉप ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, एक साल ड्रॉप करने के बाद नेक्स्ट ईयर मैंने सिर्फ इनफैक्ट आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज का एग्जाम दिया था एंड एज लक वुड हैव इट कि वहाँ से कॉल आ गया और आज मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म में आपके सामने बैठा हूँ।
0: आपकी क्या फीलिंग थी व्हेन यू गॉट टू नो कि अब मैं आई एम गोइंग टू डॉन द यूनिफॉर्म एंड
1: इनफैक्ट ये यूनिफॉर्म डॉन करने के से ज़्यादा उस समय डॉक्टर बनने का जज्बा था।
0: ओके,
1: जब क्लास 12 से के बाद में आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में गया था तो वहाँ पे जाके क्योंकि परिवार में कोई फौज में था नहीं उसके पहले, तो जब मैं आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पहुंचा वहाँ पे जब मैंने फौजियों का ये जो रुतबा देखा तब फौज ज्वाइन करने का साहस बना और जज्बा आया अंदर से।
0: साहस बना या बनाया गया?
1: दोनों ही समझ लीजिए। सो इट वाज ओनली इन आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज दैट आई डिसाइडेड कि नो आई शुड ज्वाइन द सर्विसेज।
0: बट डिड इट चेंज यू एज अ पर्सन?
1: यस डेफिनेटली डेफिनेटली।
0: कैसे?
1: सो आई फील दैट फौज एज सच काफी डिसिप्लिन्ड है
0: जी
1: एंड सेवा भाव है फौज के अंदर, एक दूसरे को आप हेल्प करते हो, कमरेडरी है काफ़ी ज़्यादा। सो आई फील दैट एज एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस यू आर पॉलिश्ड, यू आर डिसिप्लिन्ड, यू स्टैंड अपार्ट इन अ क्राउड। सो आई हैव बिकम अ वेरी पॉलिश्ड पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ आर्म फोर्सेस विच आई डू नॉट सी इन माई कोलीग्स हु वर देयर विथ मी इन क्लास 12 हु आर नॉट डॉक्टर्स, रिनाउंड डॉक्टर्स, बट व्हेन आई एम विद देम I stand apart because I'm in the services.
0: तो अभी देखिए मैंने आपसे कहा था कि 4:30 जब बजते हैं उसके बाद ना घड़ी बड़ी तेज हो जाती है तो हम बहुत जल्दी जल्दी वो सवाल पूछना चाहेंगे। तो उस ट्रेनिंग के दौरान जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी मेडिकल कॉलेज में, एक बहुत टफ एक सिनारियो के लिए भी आपको प्रिपेयर करते होंगे कि जब आप देख रहे हैं किसी कॉम्बैट सिचुएशंस में जाने जा रही हैं, आपको किसको ज़्यादा फोकस करना है किसको नहीं। आई एम सॉरी बट ये फैक्ट है और आप शायद इस बात पे थोड़ा सा और पॉलिश करके इसे प्रकाश डाल के कुछ बोलना चाहेंगे।
1: इनफैक्ट ये जो आप बात कर रहे हैं मोस्ट लाइकली आप ट्राइज की बात कर रहे हैं।
0: ओके,
1: ट्राइज इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन वॉर लाइक और डिजास्टर लाइक सिनेरियो, जहाँ पे अगर आपके पास कई विक्टिम्स आ जाते हैं जो आप जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते उससे ज़्यादा विक्टिम्स आ जाते हैं। सपोज अर्थक्वेक हो गया एंड आपके पास 100 विक्टिम्स हैं, सो कैजुअल्टीज हैं
0: जी,
1: तो उस समय ऐसा है कि ट्रायज इज वन विच इज यूज्ड। ट्रायज का मतलब होता है कि यू सॉर्ट आउट पेशेंट्स इन ग्रुप्स, उन पेशेंट्स को जिनको आप इमिडिएट कुछ करके जान बचा सकते हैं। देन सेकेंड ग्रुप होता है उन पेशेंट को कि जिनको इमिडिएट कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती बट एक बार इमरजेंसी वो इमरजेंसी नहीं है बट उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो जल्दी चाहिए। एंड तीसरा होता है कि जिनको जल्दी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं उनको आप बाद में भी देख सकते।
0: ओके,

0: एक चौथा ग्रुप होता है जो सैलवेज नहीं कर सकते आप, या तो जो
1: चौथा
0: ऑलरेडी डेड हैं या जिनको आप सैलवेज नहीं कर सकते। तो हमें यह बताया जाता है कि आप अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम इन फोर्थ कैटेगरी पे वेस्ट ना करें, बट अपने आप को आप कंसंट्रेट करें उन पेशेंट्स को जिनको आप बचा सकते हैं।
1: बट दैट्स अ टफ कॉल ना.
0: दैट्स अ वेरी टफ कॉल बिकॉज वहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते, वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है।
1: उसकी भी कोई आपको खास ट्रेनिंग दी जाती है टू हाउ नॉट यू नो नेवर
0: सो
1: लेट योर
0: सो एज
1: इमोशंस
0: एज
1: क्या
0: एज अ
1: ओवरपावर यू.
0: मिलिट्री डॉक्टर, एज अ आर्म फोर्सेज डॉक्टर, डेफिनेटली यस,
1: ओके
0: बिकॉज हमारे पास ये कॉम्बैट ट्रॉमा सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं,
1: जी.
0: इसकी काफ़ी सारे क्लासेस होते हैं, इनके हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें इसके बारे में बताया जाता है। राइट फ्रॉम द यंगर डेज एज कैप्टन्स वी डू दिस कोर्सेज, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसे कोर्सेज हमें दिए जाते हैं, ऐसे ट्रेनिंग दी जाती
1: ओके
0: है जिसे हमें इसके बारे में कॉम्बैट ट्रॉमा सपोर्ट के बारे में बताया
1: तो
0: जाता है।
1: आप तो आरआर हॉस्पिटल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं. यूरोलॉजी को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको सुनने में आती हैं, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्टेट कैंसर्स. और इज़ दैट अ कॉमन थिंग विच इज़ हैपनिंग? इट्स ग्रोइंग और इट्स बीन
0: ऑफ लेट वी हैव सीन दैट इंसिडेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर्स हैव बीन इंक्रीजिंग। सो हमें मुझे याद है कि जब मैं जनरल सर्जरी करके फौज में जब आया था
1: जी.
0: तो कैंसर इतना ज़्यादा नहीं था, कैंसर था बट इतना ज़्यादा नहीं था। आज अगर आप मेरे जो मैं ओटी कर रहा हूँ, ओटी लिस्ट देखें, तो इनफैक्ट हर एक ओटी में कोई ना कोई, इनफैक्ट एक से ज़्यादा कैंसर की ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं। सो इंसिडेंस ऑफ कैंसर ओवरऑल हैज़ इंक्रीज्ड, एंड प्रोस्टेट कैंसर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी कॉमन कैंसर्स विच वी हैव टू डील विथ इन द पॉपुलेशन। सो हमारे फौज में या तो किसी फौजी के पिताजी होते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन होता है जिनको ये कैंसर होता है, एंड वो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। तो इसके काफ़ी सारे इलाज के ऑप्शंस हैं, सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है, तो ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल विद द आर्म फोर्सेज मेडिकल हॉस्पिटल्स, एंड हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इनको अच्छे से।
1: ओके आई एम सॉरी बट मुझे एक चीज़ बीच बीच में बोलनी पड़ेगी कि वी हैव टू बी अ बिट क्विकर, क्योंकि अभी लगभग 11 मिनट रह गए हैं. कुछ प्यार व्यार की भी बातें की हैं आपने लाइफ में, या सर्जरीज की बातें की हैं?
0: नहीं, इनफैक्ट जो मेरी पत्नी है अभी
1: जी
0: वो मेरे कॉलेज के प्यार था, सो
1: अभी मतलब हमेशा के लिए तो होंगी.
0: हाँ ऑब्वियसली।
1: ओके
0: तो इनफैक्ट हम लोग साथ में पढ़ते थे कॉलेज में,
1: मेडिकल कॉलेज में.
0: मेडिकल कॉलेज में साथ में थे,
1: हाँ
0: वहाँ हमें प्यार हुआ और
1: अरे
0: आज
1: उसके
0: हम
1: लिए टाइम
0: साथ
1: मिल गया आपको?
0: कॉलेज में तो जरूर मिला,
1: एंड
0: निकालना पड़ा इनको।
1: यू आर अमंग्स दी टॉपर्स?
0: यस आई टॉप्ड माय बैच।
1: ओ क्या बात है. तो उनके बारे में कुछ बताइए.
0: तो माय वाइफ इज आल्सो इन द आर्म फोर्सेस, एंड इनफैक्ट शी इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी आईवीएफ एट आर्मी हॉस्पिटल आर एन आर
1: ओके
0: ओनली, एंड इनफैक्ट वो आपके प्रोग्राम में भी कुछ महीनों पहले आई थी, एंड सी इज़ अ ऑथर, सी इज़ रिटन अ बुक, एम आई जस्ट ए बेबी वेंडिंग मशीन,
1: डॉक्टर निकिता
0: डॉक्टर
1: नरेडी के
0: निकिता
1: बारे.
0: नरेडी। यस
1: वंडरफुल. और आपके बच्चों के बारे में कुछ जानना चाहें?
0: सो हमारे हमारी एक बच्ची है, और इनफैक्ट वो हम लोग दोनों के जैसे, माँ बाप के जैसे, वो भी एमबीबीएस कर रही है, इनफैक्ट अभी इंटर्नशिप चल रहा है उसका।
1: करो, करना पड़ेगा तुम्हें,
0: नहीं
1: क्योंकि
0: इनफैक्ट
1: हम
0: ये
1: दोनों यहाँ
0: नहीं,
1: डॉक्टर्स
0: बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी
1: हैं.
0: नहीं, इनफैक्ट ये उसका खुद का चॉइस था। शी वांटेड टू गो टू द यूएस पहले, एंड यूएस में इनफैक्ट हमने उसका एडमिशन भी करवा दिया था, बट देन
1: अच्छा
0: सी रियलाइज कि माई कॉलिंग इज़ टू बिकम अ डॉक्टर लाइक माई पेरेंट्स, एंड देन सी ड्रॉप्ड गोइंग टू द यूएस, एंड नाउ
1: ओके
0: टुडे
1: पर
0: सी इज़ परसुइंग अ मेडिसिन।
1: मन फिर भी कह रहा है उनसे मिलके पूछना पड़ेगा कि मन किस तरफ था. खैर आप कह रहे तो विश्वास कर लेते हैं, बट आप लोगों को घर के अंदर अगर दो डॉक्टर्स हों, आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू नो, सिर्फ डॉक्टरी की बातें करते रहते हैं, यू टॉक अबाउट दी
0: आप पति
1: जो.
0: पत्नी की बात के बारे में क्यों जानना
1: नहीं
0: चाहते
1: नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी बाकी चीज़ें हो रही हैं समाज में, यू अवेयर ऑफ ऑल दैट, एंड वो सब बातें भी होती हैं या
0: सो ऑब्वियसली
1: सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिसेस की बातें होती
0: ऑब्वियसली ऑब्वियसली
1: हैं?
0: सारी बातें होती हैं।
1: और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो?
0: नहीं वो हर घर की बात है, घर घर की बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
1: पर
0: तो
1: आप
0: लाजमी है।
1: जब जब आते हैं वहाँ किसी मेडिकल एक इशू को लेके या किसी केस को लेकर, कुछ डिस्कशन होता, कुछ आइडिया मिलता है ऐसा कुछ, या
0: सो
1: यू गेट
0: डेफिनेटली डेफिनेटली, सो पार्टनर, लाइफ पार्टनर हु इज़ फ्रॉम द सेम फील्ड
1: या
0: एज़ यू आर, सो आप उनके साथ अपने नॉट ओनली पर्सनल प्रॉब्लम्स बट प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी

0: डिस्कस कर सकते हैं
1: ओके ऑलराइट।
0: एंड दे कैन गिव यू अ गुड इनसाइट इनटू योर प्रॉब्लम्स।
1: आपने कहा ना कि मेरा प्यार हो गया था कुछ,
0: जरूर
1: है ना, कॉलेज लाइफ में,
0: यस।
1: तो आपका पसंदीदा गान हम लेकर आ रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि आप इसे गा के सुनाएं। यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। आर यू सेइंग यस?
0: नो नो, आई एम सेइंग एब्सोल्युटली नो।
1: ओके, तो चलिए, SP बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज में, ये बहुत हिट गाना है उस टाइम का।
0: यस, इनफैक्ट

0: होंठों की कली खिल गई और हम आगे बढ़ गए, लेकिन इस समय हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा तो शायद शो पूरा नहीं होगा। गेस करना चाहेंगे कौन है हमारे साथ? जी नमस्कार, मैं मुनीश जॉली बोल रहा हूँ।
1: हाँ नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: डॉक्टर अमित अग्रवाल मेरे साथ बैठे हैं।
1: हाँ।
0: आप उनको कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगी कुछ कि आपको कितना गर्व हुआ जब पता लगा कि वो डॉक्टर बन गए और हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे?
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ जो आज, और वो भी बहुत अच्छा रैंक लेके किया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही खुशी हुई, हम उसका भी मुंह से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं।
0: आपकी मदर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आपने सोचा था कि जब इतने नटखट थे ये, हमें पता लगा बचपन में बहुत नॉटी थे, तो डॉक्टर बन के फिर भारतीय सेना को और भारत माँ को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे?
1: नहीं, आर्मी में तो नहीं सोची थी, लेकिन हाँ अच्छा करेगा ये था मन में। लेकिन आर्मी में असल में हम लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं था किसी भी फैमिली का, इसलिए सोचे नहीं थे। जब ये गया तो बहुत अच्छा लगा जो चलो भाई आर्मी में गया है देश की सेवा करने।
0: माँ की जुबानी अगर एक माँ अपने बच्चे की एक ऐसी खास बात बताना चाहे पूरे देशवासियों को कि माँ होकर आपको किस बात पे बहुत नाज होता है, बहुत गर्व होता है?
1: बच्चे सब बड़े होके बहुत अच्छा करते हैं और खास करके देश की सेवा के लिए करते हैं तो बहुत ही माँ बाप को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। उससे ज्यादा खुशी माँ बाप, बच्चे इतने अच्छे रैंक पाके इतने अच्छे पोस्ट पे रहते हैं तो उससे अच्छा माँ बाप के लिए कुछ नहीं है। माँ बाप बहुत गौरवान्वित फील करते हैं अपने को।
0: डॉक्टर अमित अग्रवाल के पिता भी अगर पास हो तो उनसे बात कर सकते हैं?
1: हाँ लीजिए।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार,
0: कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
2: थैंक यू।
0: मैं जानना चाहूंगा कि पिता होने के नाते जब आपको पता लगा कि फौज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, तो आपके भाव उस समय क्या थे?
2: फोर्स का ऐसा था कि इसके पहले एनडीए में सिलेक्शन हुआ था उसका, तो एनडीए में ये जानने का हुआ कि एयरफोर्स ले लेगा, तो बाद में पता चला कि एयरफोर्स में मैथ नहीं है तो

0: वो ग्राउंड ड्यूटी मिलेगा, पायलट में नहीं मिलेगा, तो फिर एनडीए हम लोग ड्रॉप करा दिए। तो उसके बाद फिर ये मेडिकल बैठा, उसने पास कर गया, कंप्लीट कर गया, तो हम लोग बोले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है
1: जी,
0: हम लोगों के लिए तो अच्छी बात है। और भी यहाँ अपने फ्रेंड सर्किल में जिससे भी बात किए, सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं एकदम आँख बंद करके भेज दीजिए, तो बहुत अच्छा लगा।
1: आपकी जुबानी अगर मैं कहूँ कि पूरा देश आपको सुन रहा है, एक फौजी डॉक्टर के पिता होने के नाते जो तमाम युवा हैं, अगर आप उनको प्रोत्साहन प्रदान करना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो क्या कहेंगे?
0: देखिए, देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और इसमें कोई सोचे कि लाइफ का ये है तो इसमें आर्मी में नहीं देना है, तो ये गलत धारणा है। मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है, मृत्यु ही सच है, इस संसार में एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। इसलिए उसे डरने की चीज नहीं है। जो आर्मी में जाने का मतलब है देश की सेवा करना, और वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। इसीलिए आंख बंद करके यदि सिलेक्शन होता है तो एकदम दे देना चाहिए।
1: डॉक्टर अमित अग्रवाल आपकी आवाज सुन रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे इस समय?
0: थैंक यू, उसके उसको बहुत आशीर्वाद है हमारा, और दिनों दिन अच्छा करे, आगे बढ़े। वहाँ भी जितने उनके अफसर से बात होती है, सीनियर से, सब उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं बहुत अच्छे नेचर का है।
1: ओके,
0: बहुत प्राउड फील होता है हम लोगों को भी।
1: राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा, हमें प्रोग्राम बंद करना होगा, लेकिन मैं आपसे दोबारा बात करूंगा सर एक प्रोग्राम में, और बहुत डिटेल में आपसे जानूंगा, पर आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू,
1: आई एम सो सॉरी, बट देन वी हैव टू कट हिम, वी हैड टू कट हिम, यू नो, शॉर्ट द कन्वर्सेशन हैड टू बी लेट देयर, पर चलते चलते बहुत जल्द विद इन 30 seconds एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आज आपसे शो में पूछ रहा हूँ, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है?
2: सब कुछ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया देन, आप हमारे शो पर आए, हमारे साथ जुड़े, एंड ऑफकोर्स हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: श्रोताओं, अभी आप दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1325वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा।

0: का अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
0: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी

0: परिवार के सभी सदस्य
1: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
1: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
1: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
0: 8800044559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओ, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: भागो भागो जाओगे अरे भागो अरे अरे सिपाही आ गए अरे जाओगे जाओ आगे आगे अरे छुप जाओ छुप जाओ अरे यहां यहां
1: अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब आया काबू
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धन नंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर, बढ़े चलो, बढ़े चलो।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही

0: नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
1: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लड़ सकते हैं।
2: मैसिडोनिया चलो,
1: बाबर
2: चलो सम्राट,
0: मैसिडोनिया चलो। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए। अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
4: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दुष्टों को, भागने न पाए, पकड़ो, पकड़ो ने।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो,
7: धन्य हो,
6: धन्य हो।
8: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्त बात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1325वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
4: सिनला मेन्जी रोखरे हमांग इंग रे तका इनगम मीडियम वे 438.6 meter हि इंगम 684 kHz लेखती हांग इन रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्गी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
5: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
6: मिन का तलोन ही रन मिन चोंग ही महावत करन लखोय नगुन बनाम ही।

Min Kathalon, NJ producers, content creator, production house, right owners, hek the yip aggregators in re. Ngam prasar party na invite havek jinula vanayam ne radio program nel ngam Akashvani Isri Vijayapuram. Nandar ngam notice inviting program proposals. Luikangen mood nun mine the haveka proposals. Revenue sharing mood. Sponsor program mood hek tangam. Credits mood. In ngam program format mihoy na include tuwa mine radio dramas, documentaries, vineng story hek audio series, tunfom la in lahen ngam audio format, podcast, quiz competition hek tangam music based program indre. Yip the interested applicants ho tuja na haku ten ten aweku ngam policy in ngam Prasar Bharati content sourcing policy 2024 ureku in lahendre na submit the proposals re in ngam policy in re mine details me eligibility tami hoy na ke tare guidelines mine program agreement condition revenue sharing hek in ngam air broadcast code hek commercial advertisement code in re yip the eligible applicants miho jana submit the proposal re natru ngam format na hol re tanup ta ura ren in re details toho ke tuwa documents nalak ngayal ngam email id hooairportplayer@prasarbharati.gov.in ये हाँ रुतमिका लोन रहे तो मैंने गाइडलाइंस एक एप्लीकेशन प्रोसीजर मिहोय ऐ विजिट गम ऑफिशियल वेबसाइट गम प्रसार भारती हेक आकाशवाणी इंद्रे गम लास्ट डेट सबमिशन नु प्रपोजल निसलिप्त लुयानाय काहोक मिन अलहांगो जुलाई चिंगे तनेट कन नरनाय ता फूल उन लहला तंगी अपॉर्चुनिटीज ही ऐ के तरे इन गम क्रिएटिव कंटेंट इन गम इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर लबकते इन गम आकाशवाणी अनगे मिन कहते रहो नहीं।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉ जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अर्शी बेगम को।

श्रोताओं, अभी आप अर्शी बेगम, यूसुफ आज़ाद कव्वाल और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में कुछ दिलकश कव्वालियाँ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। पेश है व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला व्हाट्सएप हमें आया है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्वेत मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें आई है गाओ टोरोवाल, ज़िला नवाशहर, पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वानी थांदी का। सुनना चाहते हैं खिलौना फिल्म का ये गीत।

लव फिल्म के इस गीत को पसंद किया है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान स्टार और नरगिस खातून ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म से, और इस गीत को पसंद किया है रंगत से नेहा, ज्योतिका, निकिता और रोहित ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही यह कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
1: In the FIFA World Cup in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
4: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग

0: और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने

0: में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगा

0: लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर, यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:11 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और आज जिन श्रोताओं से हम जुड़ेंगे उनकी सूची पहले से ही तैयार है, तो आइए देर ना करते हुए बात करते हैं आज के हमारे पहले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम है आपका।
0: जी, धन्यवाद।
1: क्योंकि इसमें बताओ आपको, आपकी तरफ से श्रोताओं को कॉल किया जाता है।
0: जी जी

0: है कि श्रोताओं को जितना खुशी मिलती है इस कार्यक्रम में जुड़ के, उतनी खुशी मतलब दूसरे कार्यक्रम से नहीं मिल पाई हो।
1: जी जी जी जी
0: जी, क्योंकि और बाकी कार्यक्रम में फोन इन प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें श्रोताओं को कॉल लगाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो श्रोताओं को खुद कॉल आगे से आते हैं।
1: जी जी जी जी
0: जी, इसीलिए इस कार्यक्रम की रोचकता काफ़ी बड़ी हुई है और काफ़ी प्यार मिल रहा है।
1: जी जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रेम जी कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: जी जी जी, क्या करते हैं आप?
0: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: जी जी, किसान का काम करते हैं आप?
0: हाँ जी, तो अभी आपको बताऊँ, सोयाबीन की फसल लगा रखी है हमने।
1: जी जी, सोयाबीन। जी हाँ जी, तो फिर रेडियो सुनते हैं?
0: हाँ जी, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं आपके।
1: जी
0: और
1: जी,
0: जब हम खेत में काम करने जाते हैं फिर भी हमें कार्यक्रम सुनने को मोबाइल पर मिल जाते हैं।
1: जी जी जी, प्रेम जी
0: साथ में है ना, आपको बताऊँ, प्रसारण स्पष्ट रूप से मिलता है हमें।
1: जी जी जी
0: जी
1: जी, प्रेम जी वहाँ के मौसम के बारे में बताइए अभी।
0: जी अभी 2-3 दिन पहले बरसात काफ़ी हो चुकी है यहाँ पर।
1: जी जी
0: जी हाँ, और अभी मतलब बहुत तेज हवाएं भी चल रही है।
1: जी अच्छा, जी जी
0: हाँ जी,
1: तो
0: और आपको बताऊँ, जैसे हमने काफ़ी गर्मी का सामना किया था अप्रैल में और उसके बाद अप्रैल मई में, लेकिन अभी काफ़ी ठंडक में हो गई है और बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: जी जी जी, तो प्रेम जी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: जी आप सुनवा दीजिएगा, सूरज फिल्म का बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबाया है।
1: जी जी, और किसके साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी ये सुनेंगे हम विमल बसमतारी, अमल और भाईकोन मुंडा, रमेश पात्रो, ये असम के हैं, और हमारे एमपी के श्रोता है भगवान सिंह परमार, अस्तो सविना संगीता, ये त्रिपुरा से है।
1: जी जी जी,
0: और आपको बताओ जितने भी लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, दिलीप पहुजा राजस्थान से, केसरी सिंह राजपूत, रमेश टेलर, इन सभी के लिए डेडिकेट रहेगा ये गाना।
1: जी जी जी, तो प्रेम जी चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो डियर फ्रेंड।
0: जी, क्या हमारी बात बिमल जी से असम से हो रही है?
1: जी मैम,
0: जी, कैसे हैं आप बिमल जी?
1: हम ठीक है। बेमा जी असम जिला में सही सबसे बिमोल वसुंधरा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, हम मेरा दुकान है, सिलाई का काम करता हूँ मैं।
0: जी, और खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं?
1: जी खाली का समय मेरा दुकान में रहता हूँ, फिर घर में काम कर लेता हूँ, किटी वगैरह कुछ, और गाना सुन के बहुत अच्छा लगता है। रेडियो से बहुत
0: जी
1: जुड़ा हुआ है बहुत दिन से मैम।
0: जी जी तो आप रेडियो सुनते हैं?
1: जी,
0: जी, तो हमारे रेडियो में आप कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
1: ये कार्यक्रम हमको पुनीन कार्यक्रम अच्छा लगता है, और ये मैसेज कार्यक्रम, और ये आपका पुनीन ये बानी बंदो करके सुनाता है, उसको भी अच्छा लगता है मैम।
0: जी, तो बिमल जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी मैम, हमको सुनना है अनारी फिल्म का रोना सा है रोना सा है, ये गाना सुनना है।
0: जी, बिमल जी, और किसके साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी हम लोग का दोस्त के लिए दिल करना चाहता हूँ मैम। हम लोग का है सबसे पहले अमोल बसुमतारी है, और फाइकोन मुंडा है, रमेश पात्र है,
0: जी,
1: और आशुतोष है, और दिल्ली से है धर्मवीर है, और रमेश प्रजापति है, और गोल्डी है, राकेश है, पूरन वर्मा है, और भगवान सिंह परमर है, और प्रेम सिंह सुसुदिया है। जितना लाइव कॉल सुन रहा है सबको भी दिल के रहेगा मैम, और आपको भी।
0: जी, तो बिमल जी, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी
0: जी, तो
1: धन्यवाद
0: हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैम,
0: जी
1: म्यूजिक को फोन करने के लिए धन्यवाद मैम,
0: जी जी जी धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: जी, तो धर्मवीर जी
1: और
0: क्या करते हैं आप?
1: सर हमारा यहाँ रेडीमेड का काम है, होलसेल का। बच्चों उसमें अपने लगे रहते हैं, थोड़ा हेल्प रहती है उनके साथ।
0: जी
1: एशिया एशिया में सबसे बड़ी कपड़े की रेडीमेड मार्केट गांधीनगर है,
0: जी
1: पूरे एशिया में। सारा कपड़ा सिला सिलाया कपड़ा रेडीमेड तैयार होके, हर तरह का जेंट्स लेडीज यहाँ से जाता है शादियों के लिए, लहंगा और शेरवानी कोट पैंट सारे यहीं होलसेल में, यहीं से माल जाता है।
0: जी तो आप रेडियो सुनते हैं?
1: बिना रेडियो के तो पूरा टाइम पास ही नहीं हो पाता।
0: जी, तो
1: रेडियो ऐसी चीज है जो वो चलता रहेगा पीछे अपने, आप हर तरह का काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने डॉक्टरों को भी सुना कि डॉक्टर ये कहते हैं हम हल्के आवाज में रेडियो सुनते हैं और अपना डिस्टर्ब नहीं होते, सारे काम हम कर लेते हैं।
0: जी, तो धर्मवीर जी आपका पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम कौन सा है?
1: ये आपका ही प्रोग्राम हमें सबसे बेस्ट लगता है, इसलिए क्योंकि ये हमारे को लाइव सुनने को मिल जाता है। लंच का समय होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री, खाना खाते हुए हम इस समय भी हम खाना खा रहे हैं।
0: जी, तो धर्मवीर जी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: पहले मैं दो बातें मुझे करनी है, जरूरी है कि जैसे कल मेरा अपना 9 जुलाई को शादी की सालगिरह थी, उसमें हमारे काफी फ्रेंड वगैरह आए और
0: जी
1: ने विश किया। और इसी हफ्ते में एक तनुश्री नाम के एक श्रोता ने कॉल किया था और 10 साल के बाद वो लेट ब्लाइंड हो गई, तो
0: जी
1: शास्त्रीय संगीत सीखती है। उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो लोग अपने को कम ना समझे, ब्लाइंड लोग उनको हीन भावना से देखते हैं, पर
0: जी
1: उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है ब्लाइंड लोगों में। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो हिम्मत है, नर्वस ना करें,
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: ऐसा एक्सपीरियंस होगा, लोगों ने उनको हीन भावना से बात करी होगी। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ब्लाइंड लोग हैं, बस ब्लाइंड लोग हैं, वो आम आदमी से भी बेटर से बेटर सर्विस कर रहे हैं। बैंक मैनेजर है, प्रोफेसर हैं, यहाँ तक कि IAS ऑफिसर भी, क्योंकि मेरा संपर्क कई लोगों से हुआ, मैं उनको जानता भी हूँ। बैंक मैनेजर है, चीफ मैनेजर हो गए, उसके बाद फिर वो एक तो जनरल मैनेजर। ये मैं मैसेज इनको बताना चाहता हूँ कि उनको किसी ने हीन भावना से अगर कोई ऐसी बात करे तो आप को कम मत समझे, आप भी मेहनत करें और आप
0: जी
1: काफी हद तक तरक्की कर लें।
0: जी जी तो बता दीजिए आपका गाना।
1: गाना आज मैं उन्हीं के लिए ही चुन के लाया हूँ,
0: जी जी जी
1: फिल्म है तपस्या।
0: जी जी तपस्या से
1: हाँ,
0: तो
1: कुछ बीच में एक लाइन आती है जो आदमी को आगे बढ़ने को हिम्मत देती है। कभी पेड़ का काया पेड़ के काम ना आया, जीवन में उसने जीवन बिताया। कोई कितने भी फल तोड़े, पेड़ तो फलता ही रहता है, जितने मर्जी फल उसके तोड़ते रहो, आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते रहे।
0: जी,
1: जो राह चुनी तूने, इस तरह से ये लगाने की लाइन है। कुछ हमारे मित्र लोग को हम याद कर लूं, जैसे अभी पिछले हफ्ते कांता वर्मा जी आई थी, उन्होंने अपने हिमाचल का लोक गीत सुनाया। ऐसे श्रोता आते रहे हैं, सभी लोग इसके अच्छा लगता है, ऐसे कार्यक्रम में उनको भाग लेना चाहिए। और पूर्णिमा जी हैं, मोनिका जी हैं, चित्रा जी, कुंडू जी हैं, और हमारे बेटे केशव नितिन, लोकेंद्र वर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, और भगवान सिंह भगवान, केसरी सिंह, और रमेश प्रजापति, राजेंद्र सैनी, ये सभी लोग हमारे, राकेश गोल्डी हैं जो हैं, वो हमारे, ये राकेश जी हैं हिमाचल से, ये बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
0: जी,
1: एक एक एक ऐसे ऐसे श्रोता हमारे की जानकारी मिलती है कि कितने उनके अंदर हुनर है, हाथ के उनका बहुत अच्छा म्यूजिक इनका मंडली है। इन सभी लोगों को मैं सुनाना चाहूंगा, अमल बिमल है और बुल्टी दास है, गोपाल महाजन है, और सभी लोगों को मैं गाने को सुनने को कहूंगा। आपको भी दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
0: जी, धर्मवीर जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू,
0: जी
1: धन्यवाद।
0: जी

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार।
1: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी धर्म जी धर्मवीर जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया।
0: जी जी कैसे हैं आप?
1: हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश हुई है, कल भी पूरा दिन

0: श्रोताओं, कुछ और दोस्तों से हम जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service.

0: Commission in Executive, Education and Technical Branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में, और हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो चलिए बात करते हैं हमारे और भी दोस्तों के साथ। हेलो डियर फ्रेंड।
2: नमस्ते जी, सुशील यादव बोल रहा हूँ उदयपुर राजस्थान से।
1: जी जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल बढ़िया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर हमें सेलेक्ट करने के लिए, श्रोताओं से रूबरू होने के लिए।
1: जी जी जी, सुशील जी क्या करते हैं आप?
2: मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूं, और बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता हूं अभी मैं।
1: जी जी जी।
2: जो कुछ भी मैंने जीवन में सीखा है मैं शेयर करता हूं बिना किसी

0: बिल्कुल बढ़िया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर हमें सेलेक्ट करने के लिए, श्रोताओं से रूबरू होने के लिए।
1: जी। सुशील जी, क्या करते हैं आप?
0: मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ
1: जी
0: और बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता हूँ अभी मैं।
1: जी जी जी
0: और जो कुछ भी मैंने जीवन में सीखा है मैं शेयर करता हूँ, बिना किसी शुल्क के चैरिटी करता हूँ।
1: जी जी जी जी सुशील जी, आपके वहाँ के मौसम के बारे में बताइए।
0: हाँ जी,
1: मौसम मौसम कैसा है आपके वहाँ?
0: मौसम तो उदयपुर का मौसम बहुत अच्छा रहता है
1: जी।
0: और चारों तरफ हरियाली हो गई है, तो 2-3 बारिश अच्छी आ गई है
1: जी।
0: और बादल तो बराबर बने हुए हैं, मानसून
1: जी।
0: सक्रिय है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम खुशनुमा हो रहा है।
1: जी।
0: और ये राजस्थान का कश्मीर कहलाता है उदयपुर, तो उसी के अनुकूल सुंदर बना हुआ है अभी। आप
1: जी
0: सभी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, श्रोताओं को, आपको,
1: जी जी
0: कि इस वर्ल्ड फेमस पूरे विश्व में प्रसिद्ध पर्यटन नगरी में जरूर घूमने आए।
1: जी जी जी जैसा कि आपने बताया कि आप उदयपुर से हैं, तो वहाँ के कुछ प्रसिद्ध और खास जगहों के बारे में बताइए जहाँ हम घूमने जा सकते हैं।
0: उदयपुर में वैसे तो महलों और झीलों की नगरी है बड़ी,
1: जी।
0: और यहाँ पर आपको ऐतिहासिक चीजें मिलेंगी और राजपूताना की सारी अनूठी चीजें मिलेंगी, जिसमें बागोर की हवेली है, गणगौर घाट है
1: जी
0: और सिटी पैलेस यहाँ का बहुत फेमस है, और यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी भी मिलेगी इसमें। ये बहुत बड़ा गार्डन है, तो ये भी राजपूताना समय से ही है जो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। और
1: जी
0: यहाँ का शहर का ऑक्सीजन हब है गुलाब बाग, जो शहर के ठीक बीच में है, और इसमें तरह तरह की विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे विशाल, वो पुराने हैं बहुत अधिक, तो वो हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है और शहर को शुद्ध रखता है। चारों तरफ झीलें हैं, इसमें 3 झीलें प्रमुख हैं, फतेह सागर झील है और पिछोला झील है और एक एक झील और है, और इस शहर में ही झीलें हैं और शहर के बाहर भी 2-3 झीलें और अच्छी,
1: जी
0: तो चारों तरफ घूमने का माहौल है 50 किलोमीटर के रेडियस में भी।
1: जी जी जी सुशील जी, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मौसम के मुताबिक ही गाना सुनेंगे, सावन को आने दो फिल्म का गाना है,
1: जी
0: कजरे की बातें सुवन के तेल में, ये बहुत पुराना गाना है, तो
1: जी जी और किन के साथ सुनना चाहेंगे?
0: परिवार है मेरा, रेणु यादव
1: जी
0: सुनेंगी, मोहित यादव, कार्तिक यादव, नमिता यादव, संजू और शानू यादव।
1: जी जी जी तो सुशील जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं,
1: जी जी
0: मैं इतने दूर
1: धन्यवाद।
0: बैठकर भी न्यूज़ एन आई आर से बिल्कुल आपसे रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ।
1: जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: थैंक यू जी।
1: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो फिर
0: हेलो
1: अनिल का से बात कर। तो
0: जी जी अनिल जी। हेलो
1: मैं 3 दिन से बात की हूँ एग्जाम में और मौसम जो है ना एकदम हल्के हल्के बादल थे लेकिन आसमान में छपे
0: जी अनिल जी, हमें आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है।
1: आज हमको गुनाह फिल्म का इस्तेमाल किया बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की
0: आप
1: आवाजों में हमने
0: अनिल
1: तुमसे
0: जी, आपका आवाज़।
1: अब आ रही आवाज
0: जी जी बोलिए बोलिए।
1: हमको अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो में गुनाह फिल्म का इस्तेमाल किया हमने तुमको ढूंढे दे दिया यदि न पूछा कौन होता।
0: जी। अनिल जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ जी सुनमा जी सुनमा
0: जी गीत
1: जी सुनमा जी जी
0: जी जी जी आपकी पसंद का चलेगा अभी ये गीत।
1: धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: नमस्ते।
0: जी, नमस्ते। जी, क्या हमारी बात भाईकॉन मुंडा असम से हो रही है?
1: जी, मैं जिला चराईदेव तहसील सोनारी
0: जी
1: असम से बोल रहा हूँ, भाईकन मुंडा।
0: जी, भाईकॉन जी, आपके इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, मेरा कॉल मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी, मैं तो ठीक हूँ। और यहाँ का मौसम भी अभी आज तो क्या मौसम है, मतलब बारिश भी नहीं है, इतना तेज धूप भी नहीं है।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: जी, मैं तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, वो सर्वे का, हाईवे रोड प्रोजेक्ट में।
0: जी, गाने सुनते हैं?
1: जी, मैं दिन भर में तो जब भी टाइम मिलता है आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।

0: जी। तो आपको किस तरह के गाने सुनना पसंद है, नए पुराने?
1: जी, मुझे तो 90s के गाने ज्यादातर पसंद है। तो
0: जी जी
1: आनंद
0: 90s।
1: विलेंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, बिजू शाह, अनु मलिक और ये लोग कंपोजर है, संगीतकार है और गीतकार जैसे समीर जी है ना, उनके गाने
0: जी
1: तो 90 के दशक में तो उनके ही गाने ज्यादातर हिट है ना,
0: जी
1: जैसे राजा
0: जी
1: हिंदुस्तानी, दिलवाले, रंग,
0: जी
1: ये
0: जी
1: सब
0: जी
1: गाने। और ये और आनंद बख्शी जी और ये मधुर सुल्तानपुरी, जिन लोगों का जो गाना है ना बहुत
0: जी
1: अच्छा है। मतलब
0: जी भाईकॉन जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जी, 1995 में आई फिल्म गद्दार,
0: जी
1: गाना है आजकल की नहीं बात बरसों की है, वो दोस्ती वाली गाना है, ये गाना सुनना है और सारे दोस्तों को ये गाना डेडिकेट करना है।
0: जी
1: दोस्तों का
0: जी
1: नाम लेना भी नाम लेना चाहूंगा, कमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पात्र, अरुण पात्र, लाखी, जुगेंद्र रोंगटी, देवाशीष हजारिका, प्रेमजीत चक्रवर्ती, हितेंद्र दास, हेलो फर्मा चैप्टर ग्रुप के कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा,
0: जी
1: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, गौतम रायबोले जी, भगवान सिंह परमार जी, कैथरीन सिंह राजपूत जी और गंगाधर सावंतकर जी, श्रीपाल गोयल जी और जितने भी अभी सुन रहे हैं श्री विजयपुरम, सभी के लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, बहुत
0: जी
1: बहुत धन्यवाद।
0: जी जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 3:28 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। कुछ पुराने गीतों के खजाने के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। सबसे पहले पेश है फिल्म प्यार का मौसम का गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म में अभिनय का मौका मिला आशा पारेख, शशि कपूर, निरूपा राय, भारत भूषण, वास्ती, मदनपुरी, इफ्तिखार और राजेंद्र नाथ को। 1969 में निर्देशक नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित ये फिल्म नासिर हुसैन फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई थी। आइए फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म हमराज से लिया है। निर्देशक बीआर चोपड़ा ने बीआर फिल्म्स के बैनर तले 1967 में ये फिल्म बनाई थी, जिसमें सुनील दत्त, राजकुमार, बलराज साहनी, मुमताज, निम्मी, मनमोहन कृष्ण, जीवन और अनवर हुसैन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। साहिर लुधियानवी के गीतों को रवि ने संगीत से सजाया है। फिल्म का एक गीत जिसे महेंद्र कपूर ने गाया है, आज भी सदाबहार है। लीजिए सुनिए।

अब आपके लिए हम लाए हैं फिल्म अपनापन का एक गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जे ओम प्रकाश के निर्देशन में 1977 में फिल्म युग के बैनर तले बनी इस फिल्म में अभिनय का परिचय दिया जितेंद्र, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित, संजीव कुमार, अरुणा ईरानी, इफ्तिखार, राज मेहरा और पिंटू कुमार ने। आइए इस फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं।

श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि पुराने गीतों का लुत्फ आप जरूर उठा रहे हैं। गीतों की कड़ी में आइए, अब हम आपके लिए लाए हैं फिल्म छोटी सी बात का गीत, जो 1975 में बासु चैटर्जी के निर्देशन में बीआर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले रिलीज हुई थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे अशोक कुमार, अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, असरानी, नंदिता ठाकुर और राजन हक्सर। गीतकार योगेश और संगीतकार सलील चौधरी। लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए।

श्रोताओं, निर्देशक एलवी प्रसाद ने 1969 में प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले सामाजिक पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनाई थी जीने की राह, जिसमें गीतों की रचना की थी आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म के पात्र थे जितेंद्र, तनुजा, मनमोहन कृष्ण, दुर्गा खोटे, जगदीप, बेला बोस, रूपेश कुमार। फिल्म का एक सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रफ्तार का एक गीत, दिनेश रमनेश के निर्देशन में चित्रशाला के बैनर तले 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें विनोद मेहरा, मौसमी चैटर्जी, डैनी, मदनपुरी, रंजीत आदि कलाकारों ने अपने अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म के गीतकार थे अभिलाष और संगीतकार सोनी कोमी। तो सुनिए आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, पुराने गीतों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कुछ और मधुर गीतों के साथ हम अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो, प्रस्तुत करता थी मीना प्रकाश। 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4:01 हुए हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: विश्वास भी हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहां बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहां बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

0: done at lightning speed, giving you seamless banking and many other exciting benefits.
1: Visit your nearest SBI branch today and activate SBI Premier Banking. Terms and conditions apply.
2: इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को

अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गई। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी।

संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंस

वे कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। मेरे साथी भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली। क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया, मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुक कर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी, और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था, तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठा

पर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने की वही पुरानी बेंच भी। अनायास से उसके कदम वहाँ की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूब कर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं

हाँ, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां आप उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
2: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
3: बिल्कुल,
2: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
3: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माय फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती हैं, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो

0: एक्स से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी कि 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज़ के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर,
1: जी
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोग लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होता है ना, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है, तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ,
0: बिल्कुल
1: लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं?
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी ध्येय है कि अपने लाइफस्टाइल को इन्वायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत

0: बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज़ का। अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न हैं उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं,
0: बिल्कुल
1: गंभीरता से देखते हैं,
0: बिल्कुल
1: और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट, जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितने भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं
0: बिल्कुल
1: जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जाम्पल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशन से एक्शन की जर्नी है बहुत ईजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
1: आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते?
0: हाँ, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रेवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज

0: अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट. तो
1: ओके
0: जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीज़ें या 55 चीज़ें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है. तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है. तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस कर सके. आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है. तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है. तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी.
1: जी
0: और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड. उसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है, उसको रिसाइकल करने में. तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें. तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है.
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल
0: हाँ
1: कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं. तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली? अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वॉन्ट है. तो एक बार नीड वर्सेज वॉन्ट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए. तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वॉन्ट है. और फिर नीड है कि वॉन्ट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा. तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे.
1: जी जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह
0: बिल्कुल
1: रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट के,
0: बिल्कुल
1: जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल. ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है. और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा. और उससे स्ट्रेस ही होना है, जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है. तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है. और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम
1: हेल्थी
0: लोग.
1: लाइफ भी जी पाएंगे, और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम. तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड. लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है. तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है. तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है.
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे ये धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा, बोला
1: जी
0: जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ. तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में. तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे 1 पे छोटे छोटे एक्शंस लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा. वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा. तो उस चीज को बताना कई

0: बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज़ में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज़ अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज़ से शुरुआत करते हैं और वो चीज़ भी आपको डिसाइड करनी है। तो देर इज़ नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी
0: कि वो सैकड़ों चीज़ें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहाँ वो किस चीज़ को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल दो तीन ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहाँ जहाँ अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रैवल, तो 12 एयर ट्रैवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रैवल का बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है। वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स, 2,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और
0: हाँ,
1: एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे आईआईटी बॉम्बे के एक सर हैं सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का इमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में इमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की, लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जाम्पल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो, वो करने की जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है
0: बिल्कुल
1: कि हम योगदान दें जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं?
0: सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो इन्वायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए, ई इन्वायरमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनी इस पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, A+ है, B है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल

0: पे इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डी क्लटरिंग, जैसा आप कह रहे
0: बिल्कुल
1: हैं कि जब डी क्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो एक बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में।
0: इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा, तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपने अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की। तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है, और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है। जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बींग द चेंज वाला कॉम्पोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
1: आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज अ कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश की है कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे, और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और इस पे फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया, कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योग दान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल

0: जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।
3: মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলোহার্টজে এটি আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকের বাংলা অনুষ্ঠানে সকল শ্রোতা বন্ধুদের জানাই স্বাগত।

अभी आपने सुना बांग्ला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान साथियों, मिट्टी से जुड़ी हर खबर, खेत से जुड़ी हर तरक्की की बात लेकर मैं रागिनी हाजिर हूँ आपके अपने कार्यक्रम कृषि जगत में। क्योंकि जब किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। तो चलिए किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत एक नेक विचार के साथ करते हैं। और नेक विचार है, दूसरों के लिए जो रास्ता आप आसान बनाते हो, एक दिन वही रास्ता आपके लिए भी आसान हो जाता है। जिंदगी में हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, वही घूमकर हमारे पास वापस आता है। अगर आप किसी की मदद करोगे, किसी का भला सोचोगे, तो मुसीबत में लोग भी आपका साथ देंगे। नेकी कभी बेकार नहीं होती। छोटा सा काम भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे तो समझो दिन सफल हो गया। तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि हमें हमेशा जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलिए किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न है, सिगाटोका किस पौधे की बीमारी है? सिगाटोका किस पौधे की बीमारी है? इसमें तीन विकल्प भी बताए गए हैं, काजू, केला या आम। खेती का ज्ञान तो अनुभव से ही आता है। साथियों, इस सवाल का जवाब आप सोचते रहिए और इस प्रश्न का सही उत्तर हम कार्य

0: कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे हैं?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: बारिश जहाँ गिरे वहीं उसे रोक लो, इस संदर्भ में आइए सुनते हैं एक चर्चा।

जैसे कि आप जानते ही है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में एक बहुत जरूरी बात कही थी कैच द रेन अभियान के बारे में। इसलिए सरकार ने 4 जुलाई से 4 अगस्त तक पूरा महीना जल संरक्षण का अभियान चलाया है। इस अभियान का मकसद है हर घर, हर खेत, हर गांव में बारिश का पानी रोककर जमीन में उतारना, ताकि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो। इस अभियान की मुख्य उद्देश्य यह है कि बारिश के पानी को व्यर्थ ना जाने देना, हर बूंद को रोककर जमीन में उतारना और भूजल बढ़ाना। किसान साथियों, घर या गोदाम की छत का पानी बर्बाद ना करें, उसे जमीन में उतारें, खेत की मेड़ मजबूत करें, छोटा गड्ढा बनाएं, गांव के तालाब कुएं साफ रखें। आज अगर हम एक एक बूंद बचाएंगे तो कल हमारी फसल भी बचेगी और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी। याद रखें, बारिश जहां गिरे वहीं उसे थामो। आज एक बूंद बचाएंगे तो कल खेत हरा रहेगा। किसान साथियों, अभी आप कैच द रेन अभियान के तहत चर्चा सुन रहे थे।

0: बारिश के मौसम में बकरियों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है, वरना बीमारी जल्दी फैलती है। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं बकरियों में वर्षाकालीन बीमारियों के संदर्भ में डॉक्टर जयसुंदर से की गई यह बातचीत।
1: किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे बारिश के मौसम में बकरियों में जो रोग उनसे बकरियों को आप कैसे बचा सकते हैं, अगर रोग होए तो किस प्रकार से आप जो एहतियाती उपाय है वो कर सकते हैं। हमारे साथ हैं कार्यक्रम में डॉक्टर जयसुंदर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। जैसे कि हमारी आज की चर्चा का विषय है कि बारिश के मौसम में बकरियों के स्वास्थ्य की देखभाल हम कैसे कर सकते, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे जानवरों की तुलना में बकरियां बारिश के मौसम में ज्यादा बीमार होती है?
2: जी, मैं शुरुआत करना ये चाहूंगा कि जैसे आप रहे हैं कि आजकल काफी बारिश हो रही है, वैसे ये नहीं है कि सिर्फ बीमारी बारिश के मौसम में आता है। बीमारी हर मौसम में आ सकता है, लेकिन कुछ कुछ बीमारी होती है जो बारिश के मौसम में ज्यादा देखा गया है। आपने एक प्रश्न पूछा था कि बकरियों में दूसरे जानवरों की तुलना क्या अधिक बीमारी होती है बारिश में। ये बात भी सही है, क्योंकि बकरियों में क्या होता है कि उसमें अगर बारिश में भीग जाते हैं तो उसमें बीमारी होने की संभावना काफी अधिक हो जाती है, चाहे वो बकरी हो चाहे भेड़ हो। ना सिर्फ बकरी या भेड़ है, गाय भी अगर या तो दूसरे जानवर भी बारिश में, इनमें बीमारी होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, परजीवी होते हैं, इनका प्रकोप जो है संक्रमण ये बरसात के मौसम में काफी हद तक इसमें बढ़ जाता है।
1: तो बकरियों का जहां तक सवाल है, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके प्रति किसानों को थोड़ा सतर्क रहे?
2: तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पेट में होने वाले जो परजीवियों से बीमारी, उसके बारे में, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि यहाँ के जितने भी बकरी है, भैंस है, गाय है, इनमें मुख्य रूप से पेट में होने वाली जो परजीवी है, इनका संक्रमण काफी बढ़ जाता है, खास तौर पे बारिश के दिनों में। इसमें बहुत तरह के कृमि हो सकते हैं, जैसे गोल कृमि हो सकते हैं, चपटे कृमि हो सकते हैं, लीवर के अंदर के कृमि हो सकते हैं, जो लंग होता है उसके कृमि हो सकते हैं। मतलब मेरे बोलने का ये तात्पर्य यह है कि जितने प्रकार के कृमि होते हैं

0: जितने अंग हैं ये बकरियों के शरीर में, सब में ये कृमि जो है अपना
1: प्रभावित
0: प्रभाव
1: करते
0: दिखाती
1: हैं।
0: है।
1: तो इनसे बचने के लिए, जैसे आपने कहा कि बारिश के मौसम में ज्यादा होता है, तो चूंकि ये कृमि मेरे ख्याल से वातावरण में बारिश के
0: जी
1: समय में ज्यादा आ जाते हैं और बकरियों के भीतर या बाहर से भी उन्हें प्रभावित कर सकते, तो इनसे बचने के लिए किसान क्या कर सकते हैं, किस तरह के एहतियाती उपाय वो कर सकते?
0: इनसे बचने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है कृमिनाशक औषधि का इस्तेमाल करना। लेकिन कृमिनाशक औषधि का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं कि कोई भी कृमिनाशक का औषधि का आप इस्तेमाल कर लें। किसान भाइयों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उसका जो पशु

0: औषधि का इस्तेमाल करना। लेकिन कृमिनाशक औषधि का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं कि कोई भी कृमिनाशक का औषधि का आप इस्तेमाल कर लें। किसान भाइयों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उसका जो पशु है या तो बकरी है कौन से कृमि से ग्रसित है। मैं एक एक करके बताना
1: जी
0: चाहूंगा। सबसे यहाँ पे मुख्य रूप से हमने देखा है कि लीवर फ्लूक यानी कि जो लीवर में होने वाला जो कृमि है उसका संक्रमण यहाँ पे बारिश के दिनों में काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा पेट में होने वाले जो कृमि है उनका संक्रमण भी काफी हद तक बढ़ जाता है। इसको आमतौर पर हम स्ट्रोंगाइलोसिस कहते हैं। ये दो जो कृमि है, इसके अलावा एम्फिस्टोमियासिस ये तीसरा कृमि है, इनका भी संक्रमण काफी हद तक यहाँ पे बरसात के दिनों में बढ़ जाता है। हमने यहाँ पे रिसर्च भी किया है, यहाँ पे हमने स्टडी भी किया है कई वर्षों का। हम लोगों का यहाँ पे अनुसंधान के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में इनका जो है संक्रमण बढ़ जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि जैसे ही बरसात होने के पहले, तो उसके पहले उनको जितने भी उनके पास मवेशी है या तो बकरी है, सभी को कृमि नाशक औषधि का इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये जो कृमिनाशक औषधि है इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बारिश जब खत्म होती है इसके बाद भी आपको कृमिनाशक औषधि का इस्तेमाल बहुत ही करना चाहिए।
1: जिन्होंने नहीं किया है अभी कर सकते
0: हाँ, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। आमतौर पर इन दिनों में आप देखेंगे कि कई सारे किसान भाई जो हैं, पशुपालक जो हैं, बकरी पालक जो हैं, आमतौर पर ये शिकायत लेके आते हैं कि बकरियों के पेट फूल गया है, उनको डायरिया हो गया है, जुलाब हो गया है, ठीक से खा नहीं रहा है, उनका वृद्धि ठीक से नहीं हो रहा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कृमि की जो है संक्रमण हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि गोबर को लेके आप निकटतम जो भी पशु चिकित्सक केंद्र है वहां से संपर्क कर सकते हैं, या तो हमारे अनुसंधान संस्थान है उनसे संपर्क कर सकते हैं, एक्सपर्ट है SMS है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इस बीमारी का जो है सही इलाज आपको बता सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा भीगने से जो निमोनिया कहते हैं,
0: जी
1: जो इसका भी खतरा बना रहता है।
0: इसका भी आमतौर पर यहाँ पे बकरियों में काफी देखा गया है। और निमोनिया का मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में मान लीजिए कि 100 बकरियां मरती हैं तो उसमें कम से कम 25 जो बकरियां होती हैं निमोनिया के कारण इसमें मरती हैं। तो बकरियों का शरीर क्या होता है, त्वचा ऐसा होता है कि अगर वो भीग जाने से उसमें पानी जो है निकलता नहीं है, वो मॉइस्चर जो है स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि अगर थोड़ा भी अगर भीग जाने से बकरियों में निमोनिया होने का खतरा होता है। और निमोनिया का पहला लक्षण ये होता है कि शुरू में तेज ज्वर आएगा, फीवर जो हम कहते हैं 104 से 107 डिग्री भी हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि नाक से तरल पदार्थ बहता है जिसे हम आमतौर पर सर्दी कहते हैं, और थोड़े दिनों में वो सर्दी जमकर एकदम गाढ़ा हो जाता है। फिर भी अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन जो है लंग्स में चले जाता है, और लंग्स में एक बार इन्फेक्शन चला गया तो पूरे शरीर में ये इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिसेमिया हो जाता है, फिर घुटने में सूजन आ जाता है, इसके कारण बाद में जो है मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण जो है मृत्यु हो सकती है। तो किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जैसे पता चले कि उसमें तेज ज्वर है, क्योंकि कोई भी बीमार पशु या तो बीमार बकरियों को किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन क्या बीमारी हुआ है ये बीमारी का पता लगाने के लिए उनको आप एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। इसके बाद उनका इलाज करना बहुत ही जरूरी है। इलाज के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, 7 दिनों तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ये देखना चाहिए कि जो भी बाहर में चरने के लिए जाते हैं अगर भीग के आते हैं तो उनको थोड़ा सा कुछ कपड़ा सूखा कपड़ा से पोंछ दे, जहाँ पे वो बकरियों को रखते हैं जो भी शेड है या तो मचान है वहां पे आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा ना हो, बारिश ज्यादा अंदर ना आए। इससे क्या होगा कि उनको मॉइस्चर होगा और ज्यादा निमोनिया होने का खतरा हमेशा बना रहेगा।
1: तो जैसा शुरुआती फेज में अगर बुखार जब आता है
0: जी,
1: या फिर जब सर्दी नाक से निकलता है उस समय अगर इलाज करें तो ये अमूमन ठीक
0: ये आराम से ठीक हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और निमोनिया ऐसा नहीं है कि भीगने से होता है, भीगने के बाद में एक्चुअली 2-3 प्रकार के जीवाणु होते हैं उसके कारण ये निमोनिया हो जाता है। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ भीग गए तो निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होने का मतलब यह है कि शरीर में एक्चुअली वातावरण में बहुत सारे जीवाणु विषाणु मौजूद रहते हैं। जब भी वो देखते हैं कि कोई भी पशु का जो है इम्यूनिटी लेवल या तो कम हो गया है, कमजोर हो गया है, तो इसमें ये प्रवेश कर जाती है और अपना बीमारी का प्रभाव जो है उसमें दिखाती है। जैसे आपने ठीक ही बताया कि जैसे आपको पता चले कि तेज ज्वर हो गया है, खाना पीना बंद कर दिया है, नाक से कुछ तरल पदार्थ या तो सर्दी जैसा कुछ दिख रहा है, तुरंत उसको इलाज करना चाहिए। घरेलू इलाज भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे कि समालू पत्ती यहाँ पे लोकल भाषा में कहते हैं, फेंसिंग में लगाते हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं कि अंगार का आप धुआं कर सकते, तो ये बहुत अच्छा होता है, श्वास के लिए अच्छा होता है, लंग्स के लिए अच्छा होता है। इसका भी आप लोग थोड़ा सा जैसे हम घर में धूप जलाते हैं उस तरह वो करके शाम को रखने से ये अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, मच्छरों से भी थोड़ा सा
0: मच्छरों से भी ये छुटकारा हो
1: है।
0: जाता है, प्लस इसमें श्वास नली जो है उसके लिए भी काफी प्रभाव दिखाती है, काफी अच्छा होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन सी बीमारी का आप जिक्र करना चाहेंगे?
0: इसके अलावा और भी जो बीमारी होती है, जैसे एक दो बीमारी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। आमतौर पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जितने भी बकरी है उनके हम लोग खून के नमूने के हम लोग जाँच यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ नए प्रकार की जो बीमारी

0: में एक है पीपीआर। समझ लीजिए कि पीपीआर एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। और दूसरा बीमारी है ब्लू टंग। इसका मतलब है कि ब्लू मतलब नीला, टंग मतलब जीभ, नीला हो जाता है जीभ। ये दो बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो हमारे भारत के बहुत सारे राज्य में ये इसका प्रकोप होता है, एकदम एंडेमिक रूप से प्रकोप होता है, आउटब्रेक होता है। हमारे इन द्वीप समूह में भी जो है हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है कि कुछ कुछ नमूने में हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो ये खतरे की एक घंटी है, या तो चेतावनी है, मैं बताना चाहूंगा। इसके लक्षण ये है कि आपको रेस्पिरेटरी साइन, जैसे आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, निमोनाइटिस होगा, डायरिया होगा, पेट फूल जाएगा, ये सारे लक्षण है। और जो ब्लू टंग है जो मैंने बताया, ये फैलता है मच्छरों से, एक बहुत ही छोटा टाइप का एक मच्छर है, उसके काटने से ये फैलता है। और पीपीआर जो है ये कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, मान लीजिए कि कोई पशु ग्रसित है अगर बीमारी से, तो उसके पास में आने से, उसके सीधे कॉन्टेक्ट में आने से ये बीमारी फैल जाती। हालांकि अभी इतना खतरा भी नहीं आया कि हमें इसे टीकाकरण हमें देना पड़े। वैसे तो मुख्य भूमि में जितना भी ये बकरी है, इन दो बीमारियों के लिए टीकाकरण दे रहे हैं। बस ये है कि इस तरह के कुछ भी लक्षण अगर आप लोगों को दिखता है तो निकटतम पशु चिकित्सा केंद्र या लोग सलाह करें, इलाज और इसका रोकथाम हमको बता सकते।
1: जैसे आपने कहा कि जो खून के नमूनों में आपको कुछ इसके मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, लेकिन बकरियों में बीमारी मोटे तौर पर यहाँ पर ऐसे
0: मोटे तौर पर अभी तक हम लोगों को सीधे तरह से लक्षण अभी दिखा नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है कि इस तरह के लक्षण कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मतलब जो है कि वायरस जो है यहाँ पे सर्कुलेशन में है। लेकिन क्या है कि वायरस जो अपना लक्षण जो है अभी तक दिखा नहीं रहे। और जो अन्य बीमारी जो आ सकती है बीमारी के मौसम में, जैसे है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही आम बीमारी है। इसमें आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि अबॉर्शन हो जाता, क्योंकि बकरी के पेट में बच्चा करीब 5 महीने का रहता है। ये बीमारी का प्रकोप होने से करीब 4 महीने का जब गर्भ में जब बच्चा है वो गिर जाता, तो इसमें किसानों का नुकसान मतलब ये होता है। इसका और एक खतरनाक कि ये मनुष्यों में भी ये फैल सकता। मनुष्य में क्या होता है, घुटने में सूजन हो जाता है, तेज ज्वर आता है, तो एक तरह से ये जूनोटिक बीमारी है। तो इस तरह के जब आप लोगों को कोई भी एबनॉर्मल एबॉर्शन, गर्भपात अगर आपको दिखे बकरियों में, इसको निकटतम पशु चिकित्सक केंद्र है, तो इसका अलग तरह से हमें इलाज करना फिर हमें शुरू करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो फुट एंड माउथ डिजीज का आपने जिक्र किया, खुरपका मुंहपका, ये बकरियों में भी होती है?
0: ये बकरियों में भी होती है। बकरियों में उतना ज्यादा लक्षण नहीं होता है, जैसे गाय में जैसे मुंह में छाले आ जाते हैं, पैर में भी लक्षण आते हैं, बकरियों में भी उतना लक्षण नहीं होता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये देखा है कि बकरियों में भी मुंह में भी कुछ कुछ छाले उत्पन्न हो रहे थे और पैर में भी लंगड़ापन। बकरियों में कॉमन ये है कि लंगड़ापन और थोड़ा सा झाग। हम लोगों ने स्टडी करके देखा है कि करीब 500 या तो 600 बकरियों में इसके लक्षण देखे गए हैं। इसका इलाज एक ही है, इसके लिए आपको टीकाकरण आपको लगाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए पशुपालन विभाग जो है हर वर्ष 2 बार इस बीमारी के लिए टीकाकरण देती है। जितने भी मवेशी है, गाय हो गया, भैंस हो गया, सुअर हो गया है और बकरी हो गया है, इसमें टीकाकरण देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी तुरंत फैल जाता है हवा से, पानी से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। हम लोग ट्रीटमेंट करने जाते हैं कोई भी वेटनरियन, उसके द्वारा भी ये फैल सकते।
1: मेरे पूछने का मतलब था कि जब आप गाय और भैंस वगैरह को जो टीकाकरण करते हैं तो बकरियां भी इनके
0: दायरे में आती है? आती है। जितने भी मतलब मवेशी मतलब खुर वाले, फटे खुर वाले जो पशु हैं, उनमें ये देना बहुत ही जरूरी है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने जो बारिश के मौसम में जो मुख्य बीमारियां बकरियों में हो सकती है और किसानों को कैसे सतर्क रहना है, अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: जी हाँ साथियों, बाड़ा सूखा रखे, साफ पानी और सूखा चारा ही खिलाए, समय पर टीका लगवाए और बीमारी देखते ही पशु डॉक्टर से संपर्क करें। छोटी सी सावधानी से बड़ी बीमारी रोकी जा सकती है। अभी आप सुन रहे थे बकरियों में वर्षाकालीन बीमारियां, इस संदर्भ में डॉक्टर जयसुंदर से की गई यह बातचीत। अब समय हो चला है कार्यक्रम को और सुरीला बनाने का। आपके दिन भर की थकान को मिटाने और मन को तरोताजा करने के लिए आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस मधुर गीत ने तो मन को बिल्कुल तरोताजा और आनंद से भर दिया। उम्मीद है हमारे सभी किसान साथियों को यह धुन बहुत पसंद आई होगी। चलिए इस ताजगी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के सफर को आगे बढ़ाते हैं। किसान साथियों, जैसे कि आप जानते ही हो कि 1 जुलाई से वन महोत्सव शुरू हो चुका है और यह पूरे महीने रहेगा। पेड़ लगाना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं साथियों वन महोत्सव के महत्व पर एक चर्चा। वन महोत्सव भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक करना है। वन महोत्सव की शुरुआत सन 1950 भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री K.M. मुंशी ने की थी। उस समय देश में जंगल तेजी से कट रहे थे, इसलिए लोगों को पेड़ों का

0: महत्व समझाने के लिए यह अभियान चलाया गया। वन महोत्सव मनाने का महत्व, पर्यावरण संतुलन, पेड़ हवा को साफ करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बारिश और मिट्टी, जंगल होने से बारिश अच्छी होती है और मिट्टी का कटाव रुकता है, जलवायु परिवर्तन, पेड़ ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, किसानों के लिए खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने से फसल तेज हवा से बचती है, फलदार पेड़ों से अतिरिक्त आमदनी भी होती है। वन महोत्सव में हर नागरिक को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि एक पेड़ 100 बेटों के बराबर। अगर हमें आने वाली पीढ़ी को साफ हवा, पानी और हरियाली देनी है तो वन महोत्सव को सिर्फ महोत्सव न मानकर जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। वन बचेंगे तो बारिश होगी, मिट्टी बचेगी और खेती भी बचेगी। इसलिए पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, यही वन महोत्सव का संदेश है। अभी आप वन महोत्सव पर चर्चा सुन रहे थे। किसान साथियों, आइए सुनते हैं सुपारी में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों के बारे में एक जानकारी।
1: किसान साथियों, आइए आज कुछ बातें करते हैं हमारे इन द्वीपों में सुपारी में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों के बारे में। हमारे इन द्वीपों में स्पिंडल बग का प्रकोप देखा गया है। इसके लक्षण तब दिखते हैं जब स्पिंडलों पर सीधे गहरे भूरे और झुलसे निशान दिखने लगते हैं और खुली हुई पत्तियों में ये निशान धब्बों के रूप में दिखते हैं। सुपारी के ताड़ों की स्पिंडलों पर प्रति लीटर जल में 1.5 मिलीलीटर दर से डाइमेथोएट मिलाकर छिड़काव किए जाने से इस कीट पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सकेगा। घुन यानी माइट का प्रकोप भी सुपारी में होता है। प्रति लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर की दर से डाइकोफाल 18.5 EC का छिड़काव करके इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जहां तक रोगों का सवाल है, कली का सड़ना या महाली रोग सुपारी में लगता है। कच्ची गिरियों का सड़ना और झड़ जाना इस रोग के लक्षण है। गिरे हुए ये फल पेड़ के नीचे बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। शुरू शुरू में लक्षणों के रूप में सिरे की ओर गिरी की सतह पर गहरे हरे व पीले जल से लथपथ निशान नजर आते हैं। गिरे हुए इन फलों की सतह पूरी तरह सफेद कवकीय परत से ढकी होती है। मुख्य पत्ती के संक्रमित होने से कली सड़ जाती है और बाह्य पत्ती की ओर से शीर्ष का सड़ना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे विकसित होती हुई कली की ओर बढ़ता जाता है। अंततः पूरा शीर्ष क्षेत्र सड़ जाता है और फिर पौधे मर जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए कली से संक्रमित ऊतक को हटा देना चाहिए और इस पर 10% बोर्डो पेस्ट का लेप लगा दिया जाना चाहिए। महाली रोग से मृत हो चुके ताड़ों और साथ ही गुच्छों को भी हटा देना चाहिए तथा आसपास के स्वस्थ ताड़ों के शीर्ष पर 1% बोर्डो का छिड़काव करने से इस रोग की व्यापकता को कम करने में मदद मिलेगी। सुपारी में लगने वाला दूसरा रोग है पीला पत्ती रोग। पत्तियों का पीला पड़ जाना और परिपक्व एवं अपरिपक्व दोनों पत्तियों का झड़ कर गिर जाना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। बाहर के पत्तियों के शीर्ष से पीलापन शुरू होते हुए पत्ती के मध्य तक पहुंच जाता है। संक्रमित पत्तियों के शीर्ष पर अक्सर कटे हुए निशान दिखते हैं। अंतिम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पत्तियां छोटी और नुकीली हो जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए मानसून से पहले और बाद की अवधि के दौरान 2 बार में प्रति ताड़ प्रति वर्ष 200 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सुपर फास्फेट और 230 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना होगा। खेत में पानी जमा होने से रोके प्रति लीटर 2 मिलीलीटर की दर से डाइमिथोएट का छिड़काव करके टिड्डों से पौधों को सुरक्षित रखें। एक अन्य रोग पत्ती पर धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में यह रोग फैलता है। 10 वर्ष तक के पौधे इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पत्ती की सतह पर भूरे या गहरे भूरे या काले रंग के गोल धब्बे दिखते हैं। गंभीर संक्रमण की स्थिति में पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। रोग युक्त पत्तियों को हटाने और जला देने सहित सफाई के उपायों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। बोर्डो मिश्रण तथा 0.3% डाइथेन M45 का छिड़काव करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फलों में दरार की समस्या भी देखी गई है, जो कि एक प्रकार का कायिकीय विकार है। सूखे मौसम में लंबे समय तक पानी की कमी के पश्चात तुरंत पानी की अधिकता इसका प्रमुख कारण है। जब गिरी आधे से लेकर 3/4 तक पक जाती है, तब समय से पूर्व ही इन गिरियों का पकने लगना इस रोग का प्रारंभिक लक्षण है। इसके बाद गिरी किसी भी ओर से या शीर्ष से फटने लगता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही जल निकासी को

0: बेहतर बनाकर तथा प्रति लीटर 2 ग्राम की दर से बोरेक्स का छिड़काव करने से इस रोग पर कारगर रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है।
1: अभी आप जानकारी सुन रहे थे।
2: तो मेरे प्यारे किसान साथियों, बातों और जानकारियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब समय हो चला है कार्यक्रम के उस खास पड़ाव का जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, अब समय है उस प्रश्न का उत्तर जानने का जो हमने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में आपसे पूछा था। हमारा आज का सवाल था, सिगाटोका किस पौधे की बीमारी है? इसमें 3 विकल्प भी बताए गए हैं, काजू, केला या आम, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिगाटोका केले की बीमारी है। जी हाँ किसान साथियों, कुछ साथियों को इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता था और कुछ साथियों को आज नई जानकारी मिली होगी।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: चलते चलते यही कहूंगी साथियों कि मिट्टी का कर्ज तभी उतरेगा जब हम मेहनत और समझदारी दोनों करेंगे। खेत में बीज बोने से पहले जानकारी जरूर लें। जी हाँ किसान साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कृषि जगत में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस दोस्त रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंगणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगणी। इस अंक में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण शुरू, पर्यटन निदेशालय द्वारा स्कूबा डाइविंग के लिए 8 नए स्थलों की पहचान, एसटीएस बस सेवाओं में क्यूआर कोड आधारित कैशलेस किराया संग्रह प्रणाली की शुरुआत और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए आवेदन आमंत्रित।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी।

जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के लिए आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। अधिक जानकारी पोर्टल पर या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। मंत्रालय ने कहा कि ये पुरस्कार जल समृद्ध भारत के सरकारी दृष्टिकोण को साकार करने में देशभर के राज्यों, जिलों, व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य जनता को जल के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें जल उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य हितधारकों को देश में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए 2 नए फायर टेंडरों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को डिजिटल फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। उपराज्यपाल श्री जोशी ने तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने और कर्मियों के कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह प्रयोगशाला वैज्ञानिक जांच, आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण में सहायक होगी। नए फायर टेंडर आधुनिक अग्निशमन प्रणालियों से लैस हैं, जो आपातकाल स्थितियों में त्वरित कार्रवाई और बेहतर प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों और संगठनों से स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उपराज्यपाल प्रशस्ति पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार कला, वाणिज्य, शिक्षा, खेलकूद व संस्कृति और समाज कल्याण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 24 जुलाई शाम 5 बजे तक सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ गोपनीय सेल सचिवालय के पास जमा या ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इस पुरस्कार के लिए सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी व्यक्ति दोनों ही पात्र हैं। पर्यटन निदेशालय ने स्कूबा स्कूल इंटरनेशनल के सहयोग से मध्य अंडमान के मायबंदर तथा उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में स्कूबा डाइविंग के लिए 8 नए स्थलों की पहचान की है। यह पहल उत्तर एवं मध्य अंडमान को साहसिक जल पर्यटन के प्रमुख गंतव्य के रूप में विकसित करने की रणनीति का हिस्सा है। चिन्हित स्थलों में मायबंदर के नॉर्थ ऑफ साउंड आइलैंड रॉक मार्कर 077 और बोचांग, जबकि डिगलीपुर के हिरन टिकरी, लैंडफॉल ईस्ट, रॉस एंड स्मिथ का हाउस रीफ, पेजिट आइलैंड तथा लैंडफॉल साउथ शामिल हैं। इनमें अधिकांश स्थलों पर बोट डाइविंग तथा रॉस एंड स्मिथ में शोर डाइविंग की सुविधा उपलब्ध होगी। पर्यटन विभाग के अनुसार इस पहल से उत्तर एवं मध्य अंडमान में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा पर्यटन कारोबार को नई गति मिलेगी। अब इन 8 नए स्थलों के जुड़ने से उत्तर एवं मध्य अंडमान में स्कूबा डाइविंग के कुल 12 अधिकृत स्थल हो गए हैं, जहां पर्यटक प्रवाल भित्तियों, समृद्ध समुद्री जैव विविधता और अनूठी जलमग्न दुनिया का रोमांचक अनुभव ले सकेंगे। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया अंडमान चैप्टर ने द्वीप समूह में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वीर सावरकर पार्क बर्मानाला में हाल ही में तट सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस सफाई अभियान का नेतृत्व ADTOI अंडमान चैप्टर के चेयरमैन एम विनोद ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि द्वीप समूह के साफ सुथरे समुद्र तट इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पर्यटन संपत्तियों में से हैं और उन्हें संरक्षित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पर्यटन से जुड़े लोगों, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने और द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में योगदान देने का आग्रह किया। इस पहल का उद्देश्य समुद्र तटों को साफ रखने, तटीय इकोसिस्टम की रक्षा करने और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाना

करना था। स्वयं सेवकों ने समुद्र तट से प्लास्टिक का कचरा और अन्य गंदगी इकट्ठा की और पर्यटकों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने और सफाई बनाए रखने के बारे में जागरूक किया। राज्य परिवहन विभाग की ओर से कार्यान्वयन के पहले चरण में प्रशासन द्वारा संचालित एसटीएस बस सेवाओं में क्यूआर कोड आधारित कैशलेस किराया संग्रह प्रणाली की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता, दक्षता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों को एक सुरक्षित, संरक्षित और परेशानी मुक्त डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करना है। इस पहल के तहत यात्री अब बस कंडक्टरों के पास उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर किसी भी यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बस किराए का भुगतान कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने आम जनता से इस डिजिटल भुगतान सुविधा का उपयोग करने की अपील की है। भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा द्वीप समूह के अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की घोषणा की गई है। इच्छुक छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तय की गई है। माध्यमिक स्तर के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र जो अतिरिक्त छात्रवृत्ति अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छात्रों के बैंक खाते सक्रिय और आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह मंत्रालय की प्रमुख नवाचार पहल है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक, एमएसएमई छात्र और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी 6 विषयगत क्षेत्रों में अपने नवाचार संबंधी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। चयनित नवाचारों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, इंक्यूबेशन सहायता तथा प्रत्येक स्वीकृत विचार के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर भी मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल my.msme.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया या परियोजना संबंधी मार्गदर्शन के लिए इच्छुक उम्मीदवार टेकवेव्स इंक्यूबेशन सेंटर, डॉक्टर बीआर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक आरसेती स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से द्वीप समूह के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान ने ग्रामीण विकास निदेशालय के सहयोग से कैम्बल बे ग्राम पंचायत में एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जहाँ 33 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी क्रम में SBI आरसेती आने वाले महीनों में द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में कई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इनमें श्री विजयपुरम में कंप्यूटर आधारित अकाउंटिंग कार्यक्रम, शहीद द्वीप कार्निकोबार और मायाबंदर में LMV ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शिवपुर ग्राम पंचायत में महिला सिलाई कार्यक्रम शामिल है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वर्तमान आपातकालीन एम्बुलेंस टोल फ्री टेलीफोन नंबर 102 को बदलकर अब 112 कर दिया गया है। अब से द्वीप समूह के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस टोल फ्री टेलीफोन नंबर 112 का उपयोग किया जाएगा, जिसमें जीबी पंत अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के टाउन वेंडिंग कमेटी ने 6 जुलाई से स्ट्रीट वेंडर्स के सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है, जो 1 अगस्त तक चलेगा। इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स की

वास्तविकता और प्रमाणिकता स्थापित करना है। परिषद ने स्ट्रीट वेंडर्स को परामर्श देते हुए कहा कि सर्वेक्षण के दौरान वेंडर के साथ उनके ठेले का होना अनिवार्य है। उन्हें अपने पास आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे। जो वेंडर अपने संबंधित वार्ड में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। चयनित वेंडर्स को पात्रता निर्धारित करने के लिए लागू योजना के प्रावधानों के अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में शपथ पत्र जमा करना होगा। वन महोत्सव के अवसर पर मायाबंदर वन प्रभाग द्वारा पूरे जुलाई माह में पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत 1 जुलाई को मायाबंदर बाजार, तुगापुर जंक्शन और करमाटांग गांव में हुई। पिछले दिनों लखनऊ गांव में ग्रामीणों की सहभागिता से पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान पानीघाट के एक किसान की भूमि पर 70 से अधिक फलदार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में वन अधिकारी AC तिलक, वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। वन विभाग ने बताया कि इसी प्रकार के पौधरोपण अभियान कल वेब्बी गांव तथा 18 जुलाई को करमाटांग 10 में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी संस्थानों एवं निजी आवासों के सौंदर्यीकरण तथा बच्चों के साथ पर्यावरण विषयक संवाद कार्यक्रम भी पूरे माह आयोजित किए जाएंगे। वन प्रभाग ने सभी ग्रामीणों, शिक्षण संस्थानों और आम नागरिकों से इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। साथ ही निकटतम वन नर्सरी से निशुल्क सजावटी एवं फलदार पौधे प्राप्त कर अपने घरों, संस्थानों और परिसरों में रोपित कर पर्यावरण संरक्षण तथा हरित आवरण बढ़ाने में योगदान देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही समाचार तरंगिणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगिणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका ज्योति लकड़ा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए, 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाहरी सफाई की ही तरह अंदरूनी सफाई भी बहुत जरूरी है। इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर जमा विषाक्त और टॉक्सिन्स को बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ और विषमुक्त रह सकते हैं। आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा प्रणाली में डिटॉक्सिफिकेशन पर विशेष जोर दिया जाता है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो कई प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं के साथ एक समय के बाद अपशिष्ट बनकर शरीर से बाहर आ जाता है। हालांकि इसका कुछ अंश शरीर में शेष रह जाता है, जो धीरे धीरे जमा होकर कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है। डिटॉक्सिफाइंग की विधि आपको बीमार से बचाने में मदद करने के साथ शरीर के तमाम अंगों को स्वस्थ और फिट बनाने में सहायक है। आप घर पर ही आसानी से कुछ उपायों को प्रयोग में लाकर शरीर से विषाक्तताओं को कम कर सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जानते हैं, जिसको सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का

मतलब है रक्त को शुद्ध करना। ये लिवर में रक्त से अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बॉडी डिटॉक्स के दौरान किडनी, फेफड़े, लिम्फैटिक सिस्टम और त्वचा से विषाक्त पदार्थों को भी समाप्त किया जाता है। आमतौर पर शरीर की बाहरी शुद्धि पर तो हम सभी का ध्यान होता है, लेकिन आंतरिक सफाई पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसे में ये विषाक्त पदार्थ शरीर को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। अगर शरीर में हार्मोन संतुलित नहीं रहते हैं तो इससे कई रोगों का जोखिम बढ़ जा सकता है। खासकर महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अनियमित पीरियड्स, PMS, PCOD, PCOS और थायराइड आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेट को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि हार्मोन्स को संतुलन और पेट को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है? संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शरीर को डिटॉक्स करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स कई गंभीर रोगों को जन्म दे सकते हैं। बॉडी डिटॉक्स हार्मोन्स को संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं? इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के जरिए आप जानेंगे ये सब टिप्स। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हम सभी दिन भर खूब पानी पीते रहते हैं तो ये शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे असरदार तरीका हो सकता है। पानी पीते रहने से किडनी के माध्यम से अपशिष्ट उत्पाद आसानी से बाहर आ जाते हैं, जिससे उनके शरीर में जमा होने का जोखिम कम हो जाता है। पानी पीते रहने से शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषण में भी लाभ मिलता है। नींबू को बॉडी डिटॉक्स डाइट का मुख्य हिस्सा माना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो रोग पैदा करने वाले मुक्त कणों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा खट्टे फल का शरीर पर एक क्षारीय प्रभाव होता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर के पीएच संतुलन को बेहतर करने में मदद कर सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को लाभ होता है। ऐसे पदार्थों का अधिक सेवन करें जो आपके पाचन को बेहतर बनाए और पेट को स्वस्थ रखे, साथ ही आपको पेट में गैस और कब्ज से बचाए। अनपचा भोजन शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ावा देता है। आप छाछ, दही, फर्मेंटेड फूड्स जैसे प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं। सांस संबंधी व्यायाम करने से शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद मिलती है, साथ ही ये आपके फेफड़े को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ये एक्सरसाइज शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना और अपने सिस्टम को साफ करने में मदद करने के लिए दिन की शुरुआत गर्म पानी और नींबू के साथ करना फायदेमंद है। बॉडी डिटॉक्स के लिए उचित आहार भी आवश्यक है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। वही फाइबरयुक्त चीज़ें पाचन को ठीक रखने के साथ मलत्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती है, जिसके शरीर के अपशिष्टों को आसानी से बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, ये लम्हे प्रोग्राम मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। लम्हे प्रोग्राम के हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रसारित किए गए सभी प्रोग्राम्स डॉक्टर, विशेषज्ञ व अकेडमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रोग्राम में प्रसारित किए गए तत्वों के सूचनाओं को लम्हे प्रोग्राम के पेशेवर यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स द्वारा जांचा परखा गया है। संबंधित प्रोग्राम श्रोताओं की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। लम्हे प्रोग्राम में जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और ना ही जिम्मेदारी लेता है। प्रोग्राम में कही गई संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉडी डिटॉक्स के बारे में। आप तो जानते हैं कि अगर खाना पचने में ज़रा आपको दिक्कत हो रही है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, इससे जो भी ऐसा खाना बच गया है अपने पेट में वो फर्मेंट होती है

और टॉक्सिन्स के रूप में कई प्रकार की बीमारी फैलाती है। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और आसान तरीका डिटॉक्स का ये भी है दोस्तों कि हम फास्ट करें, यानी उपवास रखें। जी हाँ, आपने सही सुना, उपवास रखने से जितने भी विषैली पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। पहले तो लगता है कि उपवास रखना बहुत ही मुश्किल है, पर धीरे धीरे इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं। कुछ घंटों तक आप शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में 24 घंटे, फिर उसका समय धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। पर ज़रूर अपने डॉक्टर से इसकी सलाह मशवरा करने के बाद ही आप जो भी फास्ट करना है, उपवास करना है, ये शुरू कीजिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो दोस्तों, फास्टिंग के बहुत अच्छे परिणाम और रिजल्ट्स भी हम देख चुके हैं लोगों में। जितना जल्दी डिटॉक्स बॉडी फास्टिंग में होता है, वो न किसी तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए फास्टिंग को अपनाएं। कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करके एक पूरा दिन आप फास्ट कीजिए और देखिए आपका ऊर्जा, आपके एनर्जी लेवल्स कितना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युववाणी कार्यक्रम के तहत सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। चित्रपट संगीत, फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार, तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। और रात 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और रात 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में जानेंगे करी पत्ती की काश्त के बारे में सुबह 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा लोग शीर्षक पर जिसे आप सुनेंगे सुबह 6:15 पर। पर सुनिए रामचरित मानस गान। वतन के गीत का समय रहेगा 6:40। मौसम की जानकारी

और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। हेलो डॉक्टर, लाइव फोन इन प्रोग्राम का समय रहेगा 7:30, विषय रहेगा युवाओं का स्वास्थ्य बेहतर भविष्य की पहली शर्त। श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर अभिजीत रॉय। आठ बजकर 30 मिनट पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप मन्ना डे को सुनेंगे। तराने सुहाने कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप एस गोविंद राजन का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का समय रहेगा 10:00। कार्यक्रम गीत गुंजन का आनंद लीजिए दिन के 11 बजे। 11:30 पर लुत्फ लीजिए कार्यक्रम गीत अतीत का। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा और कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप नूर जहां को सुनेंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम, जिसे आप सुनेंगे 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम होगा और 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा आप सुनेंगे कुछ सुप्रसिद्ध गीत। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 9वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40। 4:45 पर लुत्फ लीजिए कार्यक्रम बहारों की शाम में। 5:00 तमिल कार्यक्रम में सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस पर चर्चा और साहित्य कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में डॉक्टर आर माधुरी देवी का वीणा वादन सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तथा रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर सुनिए विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।

श्रोताओं, आपको पुनः बता दें, अब से कुछ देर बाद संध्या 7:30 पर युववाणी कार्यक्रम के तहत सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।

चित्रपट संगीत, फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। और रात 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। संदेशे आते हैं।

फिर 10 मिनट पर जलियानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा लोग शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे 6:15 पर। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर।

हेलो डॉक्टर, लाइव फोन इन प्रोग्राम का समय रहेगा सुबह 7:30। विषय रहेगा युवाओं का स्वास्थ्य बेहतर भविष्य की पहली शर्त। श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अभिजीत रॉय। तराने सुहाने फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा सवेरे 9 बजे।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद
1: स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन, आइए मिलकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। गीला सूखा सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे को 4 भागों में अलग करें। कचरा न जलाएं, न इधर उधर फेंके। अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-2739 पर संपर्क करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सीमावर्ती क्षेत्रों में हर चुनौती का प्रभावी मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने बनाई व्यापक रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ बनाई जा रही है। विज्ञान केंद्र कल 77वें वन महोत्सव समारोह में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा। बाराटांग में खारेपन से प्रभावित भूमि पर जलवायु अनुकूल धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और सेवा भारती द्वीपों के युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वैज्ञानिक रूप से सीमावर्ती बुनियादी ढांचे में 400% की वृद्धि की है। सरकार 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी भारत म्यांमार सीमा पर 31,000

0: करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित और रहने योग्य बनाते हुए परोक्ष युद्ध, अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन से संबंधित खतरों और जनसंख्यिकीय परिवर्तनों जैसी अन्य सुरक्षा चुनौतियों को रोकना है। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया।

छत्रपंत, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन से संबंधित खतरों और जनसंख्यिकीय परिवर्तनों जैसी अन्य सुरक्षा चुनौतियों को रोकना है। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पर्यावरण एवं वन विभाग की वन विस्तार एवं प्रचार प्रभाग द्वारा 77वें वन महोत्सव 2026 का मुख्य समारोह कल सुबह 9 बजे से विज्ञान केंद्र कार्वाइंस कोब रोड श्री विजयपुरम में आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण विषयक व्याख्यान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों का उद्देश्य लोगों में वनों के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है धान की खेती और सेवा भारती। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम ने कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर एवं मध्य अंडमान तथा कृषि विभाग के सहयोग से कल बाराटांग के अड़ाजिक ग्राम पंचायत में खारेपन से प्रभावित मिट्टी में जलवायु अनुकूल धान की खेती विषय पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में लगभग 45 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में खारेपन से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जलवायु अनुकूल धान उत्पादन तकनीकों, लवण सहिष्णु धान की किस्मों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, पोषक तत्व एवं जल प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन तथा अन्य जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान संस्थान द्वारा विकसित लवण सहिष्णु धान की किस्म द्वीप धान 5 के ट्रूथफुली लेबल्ड के बीज 50 किसानों को वितरित की गई। इससे बाराटांग क्षेत्र के लगभग 8 हेक्टेयर खारेपन से प्रभावित निचले धान क्षेत्रों में खेती की जा सकेगी। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉ. जय सुंदर के मार्गदर्शन में हुआ। डॉ. पी. के. सिंह पाठ्यक्रम निदेशक, डॉ. वाई. रामकृष्ण तथा कृषि निदेशक डॉ. देवव्रत बसंतिया पाठ्यक्रम समन्वयक रहे। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का समन्वय कृषि क्षेत्र सहायक सी. मुर्गन ने किया। सेवा भारती द्वीपों के युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन एवं प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यह पहल चिन्मय मिशन, वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग तथा आकाश ज्ञान केंद्र एवं स्टार कोचिंग के समर्थन से संचालित की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और किफायती कोचिंग उपलब्ध कराना है। इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे आकाश ज्ञान केंद्र में आयोजित होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान भातुबस्ती ने राष्ट्रीय इंक्यूबेशन कार्यक्रम 2026-27 के तहत कृषि यंत्रीकरण एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार करने वाले भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। संस्थान के अनुसार यह कार्यक्रम ऐसे नवाचारकर्ताओं के लिए है जिन्होंने कृषि यंत्रीकरण अथवा कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी से संबंधित नवोन्मेषी प्रोटोटाइप या न्यूनतम उत्पाद विकसित किए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित प्रतिभागियों को तकनीकी परामर्श, इंक्यूबेशन तथा हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान कर उनके अभिनव व्यावसायिक विचारों को बाजार के लिए तैयार और व्यावसायिक रूप से सफल उद्यमों में विकसित करना है। चयनित प्रतिभागियों को 2 माह के इंक्यूबेशन कार्यक्रम में विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता तथा उत्पादों के परिष्करण और व्यवसायीकरण के लिए निरंतर सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक उद्यमी एवं स्टार्टअप्स 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डी. करुणाकरन से दूरभाष संख्या 9433286866 पर संपर्क किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र

0: 2026-27 के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की श्रेणीवार अंतिम मेरिट सूची 13 जुलाई को कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर जारी की जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावे या आपत्ति महाविद्यालय की ईमेल आईडी admission@gmail.com पर 14 से 16 जुलाई तक भेजी जा सकती है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची 17 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बीटेक पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया है। संस्थान के अनुसार लेटरल एंट्री डिग्री प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी विस्तृत पाठ्यक्रम संस्थान की वेबसाइट अथवा MSBTE के ई कंटेंट पोर्टल पर देख सकते हैं। चिंथे रेंज में 17 और 24 जुलाई को फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीमावर्ती क्षेत्रों में हर चुनौती का प्रभावी मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने बनाई व्यापक रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ बनाई जा रही है। विज्ञान केंद्र कल 77वें वन महोत्सव समारोह में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेगा। बाराटांग में खारेपन से प्रभावित भूमि पर जलवायु अनुकूल धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और सेवा भारती द्वीपों के युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध भागों में हल्की वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल रात 8 बजे, श्री विजयपुरम से चलेगा जलयान। परसों 12 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कालीघाट रविवार 12 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान परसों ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर एमवी भारत सीमा 15 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलयान की वापसी यात्रा होगी बृहस्पतिवार 16 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए। नालंदा जलयान नानकौरी होते हुए कैम्बलवे के लिए मंगलवार 14 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान बृहस्पतिवार 16 तारीख को सुबह 8 बजे कैम्बलवे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट

आइलैंड कदमतला लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान 12 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। और स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा तथा ये जलयान परसों 12 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा।

प्रसार भारती आकाशवाणी श्री विजयपुरम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रेडियो कार्यक्रमों के चयन हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रण सूचना NIPP के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करता है। प्रस्ताव इन तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए गए हैं: राजस्व साझेदारी मोड, प्रायोजित कार्यक्रम मोड तथा निःशुल्क मोड। कार्यक्रमों में रेडियो नाटक, विस्तृत चित्र, कहानी वाचन, ऑडियो श्रृंखला, नवाचारी ऑडियो प्ररूप, पॉडकास्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा संगीत आधारित कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक एपिसोड की अवधि 14 या 28 मिनट तक होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 तथा उसके नवीनतम संशोधनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इस नीति में पात्रता, कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश, अनुबंध की शर्तें, राजस्व साझेदारी, आकाशवाणी प्रसारण संहिता तथा वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक विवरण एवं सहायक दस्तावेजों सहित अपने प्रस्ताव ईमेल hoaarportblair@prasarbharti.gov.in पर भेज सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रसार भारती तथा आकाशवाणी की आधिकारिक वेबसाइट prasarbharti.gov.in/NIPP, akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF देखें। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है या सुनहरा अवसर ना चुके अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक तथा प्रसारक तक पहुंचाने के लिए आज ही अपना प्रस्ताव भेजें। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है: 03192-240127, 03192-238881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

शारिब तोशी और सुनिधि चौहान के स्वरों में अब सुनिए फिल्म जिद का ये गीत। संगीत है शारिब तोशी का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं, 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राह की ठोकरें कहती है कि लौट जाओ, मगर भीतर का जिद कहती है बस आगे बढ़ते जाओ। बंजर जमीन पर भी जो रोज हल चलाता है, वक्त बदलता है ऐसा कि वो मरुस्थल को भी महकाता है। निरंतरता ही वह चाबी है जो हर बंद ताला खोलेगी। आज हमारी खामोश मेहनत कल सफलता बनकर बोलेगी। दोस्तों, आज शुक्रवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें गुरुवार शाम 4 बजे से 4:30 तक इन नंबरों पर 2323623255588। हमारा स्टडी कोड है 031192। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: राम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी नमस्कार भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बहुत बढ़िया हैं। और अभी जैसे ही कॉल मिला है दीदी तो कॉल भी मिल गया
0: जी। हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है मेरा साया
0: जी,
1: और इसमें एक गीत है नैनों में बदरा छाए।
0: आज का दिन कैसा गया आपका?
1: दीदी दिन तो बहुत अच्छा गया, बढ़िया मौसम, ठंडा मौसम है, हवा चल रही है और बरसात तो आज कम हुई दीदी, ज्यादा नहीं हुई।
0: जी बिल्कुल, मौसम का आनंद लीजिए यूं ही। तो बताइए ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी दीदी, हमारे दोस्त हैं लोकेन वर्मा जी, तनुश्री बितिया है महाराष्ट्र से, और पूर्णिमा दीदी है विजयपुरम से, और केसे सिंह राजपूत जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, इन सबका साथ सुनना चाहेंगे दीदी। और हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप के सभी सदस्य हैं।
0: जी जी, तो चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका नाम कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात।
0: जी तनुश्री जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैम, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है पद्मावत
0: जी
1: और गाने के बोल है, नीनो वालों ने छेड़ा मन का प्याला, छनकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया, ऐसा मैम गाना है।
0: अति सुंदर, आप बहुत अच्छा गीत गाती हैं।
1: थैंक यू। और मैम दोस्तों का नाम लेना चाहती
0: हाँ
1: हूँ,
0: जरूर जरूर
1: पहले तो आप है,
0: जी, धन्यवाद।
1: मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा, भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है शिमला से, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी है, अविनाश जी है, अमर भट्टाचार्य जी है, गंगाधर सावनकर जी, इन सबके मैम साथ सुनाऊंगी।
0: जी चलिए, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड
1: जय माता दी।
0: जी। जय माता दी। आपका नाम कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी, पूरन वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: जी, हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, मैं आज फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, गाना गा के सुना दो अगर आपके
0: जी
1: पास मिल
0: जी
1: जाए।
0: जी जी जरूर जरूर।

0: ये तुमको ये गाना।
1: बहुत ही खूब, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। आज का दिन कैसा गया आपका?
0: बस मैडम दिन अच्छा गया और अच्छा मौसम भी अच्छा है, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है।
1: जी अच्छी बात है। तो ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी मैडम, सबसे पहले आप है
1: जी धन्यवाद।
0: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, गोल्डी भाई है, रमेश पात्र है, बिमल है, अमल है और जितने भी कॉलर, तमाम सुनने वाले।
1: जी, तो चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड,
1: हेलो हेलो
0: हेलो नमस्कार,
1: फ्रेंड
0: आपका नाम?
1: जी। दीदी मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सोनारी असम से भाईकुन मुंडा बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ, और आप सभी जी ठीक हैं?
0: जी हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है टक्कर,
0: जी
1: उसमें गाना है आंखों में बसे हो तुम। जी
0: बहुत ही प्यारा गीत है। तो वैसे आप करते क्या हैं?
1: जी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, सड़क रोड बनाने का रोड प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ अभी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: 2 दिन पहले से तो गर्मी था, आज थोड़ा मौसम ठीक है, धूप भी नहीं है बारिश भी नहीं है, लेकिन मौसम अच्छा है। हाँ
0: जी, तो ये गीत आप आज के दिन किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा अपना, जो अमल बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्र, अरुण पात्र, लाखी, जोगेंद्र रोंगपी, अंजलि बसुमतारी है, हेलो फरमा चकता ग्रुप, कुछ दोस्तों के नाम भी लेना चाहूंगा,
0: जी
1: भगवान सिंह
0: जी
1: परमार जी, गौतम रायबले जी, लोकेंद्र वर्मा जी, जितने भी अब सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: तो हमें आपसे बात करकर बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं असम से बात कर रहा हूँ, सोनितपुर असम से।
0: जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम है अमल बसुमतारी।
0: जी अमल जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी बहुत अच्छे हो।
0: जी, तो आज के दिन कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: विरासत फिल्म का जो भी गाना हो सुना दीजिए। विरासत फिल्म का जो गाना है बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, तो बताइए ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: महाराष्ट्र से तानुश्री और शिमला से राकेश है, पूरन वर्मा, भगवान सिंह परमार सुनेगी, और रमेश प्रजापति, और हमारे असम से भी भाईकोन मुंडा, विमल बसुमतारी, रमेश पात्र, रुखुबेले मेठा, हितेंद्र दास और देवाशीष हजूरिका, इन सबों के साथ सुनना चाहते हो।
0: चलिए आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश के गाए फिल्म आनंद से था। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। राहुल देवर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है भंवर।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: अब प्रस्तुत है किशोर कुमार और मुकेश की आवाज़ों में गुलजार का लिखा एवं सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ मेरे अपने फिल्म का ये गीत।

अगले गीत में राहुल देव बर्मन के संगीत को शब्द दिए गीतकार मजरू ने, स्वर दिया आशा भोसले और किशोर कुमार ने, और ये गीत है राखी और हथकड़ी फिल्म का।

अब पेश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दिल का राजा फिल्म का एक गाना। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत से नवाजा है आर डी बर्मन ने।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को हमने फिल्म ईमान से लिया है। गायक कलाकार हैं आशा भोसले।

और अब कार्यक्रम के अंत में बावर्ची सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गाना। मन्ना डे और आसरानी की आवाजों में मदन मोहन के संगीत निर्देशन में तैयार इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता के 7 पदों की प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की APR/ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: लीजिए अब सुनिए संवेद स्वर में गौरव गान।

अभी आप संवेत स्वर में गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना

0: की वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़

0: पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: Pineapple Festival का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कारण

दिल से निकली फरमाइश जब सुरों से मिलती है, तब बनता है आपका अपना संगीत भरा सफ़र। तो चलिए निकल पड़ते हैं ऐसे ही सफ़र पर, कार्यक्रम संदेशे आते हैं के साथ।

कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें, अपना पसंदीदा गीत को सुनने के लिए हमें भेजिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 9474234000। श्रोताओं, तो पढ़ते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने ने। हमारे इन दोस्तों ने पसंद किया है फिल्म सिर्फ तुम का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: प्यार करती हूँ कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म 36 चाइना टाउन से, डेरी फ्रॉम श्रीविजयपुरम से अभिलाष राव, कृतिका राव और सोनी। तो चलिए सुनवाते हैं हमारे ये लिसनर्स की पसंद का ये गीत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक आध भागों में हल्की वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यही समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 21वीं तिथि तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:28:30 हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: सभा की शुरुआत करते हैं अनमोल विचार के साथ।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ संसाधनों का संतुलित उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि हम संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें, शिक्षा को बढ़ावा दें और जागरूक नागरिक बने तो बढ़ती जनसंख्या भी देश की शक्ति बन सकती है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, संसाधनों का सदुपयोग करेंगे और समाज में जागरूकता फैलाने में अपना योगदान देंगे।
0: अनमोल विचार के पश्चात अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।